ये आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी सागर है। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिनका अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए इंतजार करें थोड़ी सी देर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है अर्चना का, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ। गीत रचना डॉक्टर ललित मोहन की।

0: अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आपको अवगत कराते हैं आज के कुछ खास खास कार्यक्रमों के समय से। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ लेकर आएंगे सुबह 6:30 पर। 6:40 का वक्त कुछ पुराने फिल्मी गीत सुनने का रहेगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। कृषि संकेत में आप कृषि उपयोगी चर्चा सुनेंगे। वक्त रहेगा सुबह 7:05। जी हाँ, 7 बजे का वक्त आपका जाना पहचाना। हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह होगा। मन चाहेगी फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम सुबह 7:20 पर श्रोता सुन सकते हैं और रात्रि 9 बजे भी मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे आपके लिए। श्रोताओं, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि रात्रि 8 बजे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत आप कार्यक्रम सुनेंगे जिसमें आज का विषय रहेगा किसान सशक्तिकरण। संगीत सरिता सुनिएगा सुबह 7:45 पर, शाम 5:30 पर, शाम 6:15 पर भी आप संगीत सरिता का आनंद लेंगे और रात्रि 8:35 पर भी संगीत सरिता लेकर आएंगे आपके लिए। मन चाहे कि जी हाँ, इस कार्यक्रम का वक्त भी आपका जाना पहचाना सुबह 7:20। और जैसा अभी हमने आपको अवगत कराया, रात्रि 9 बजे भी आप मनचाहे गीत सुनते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार, ये लेकर आएंगे सुबह 9:50 पर। 10 बजे जिले की चिट्ठी, आज 10:05 पर श्रोता सुनेंगे फोन करें लोकगीत सुने। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे सुबह 11 बजे।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुन

श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 8 बजे। आज विषय रहेगा किसान सशक्तिकरण। रात्रि 11 बजे का वक्त हिंदी में समाचारों का और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 6:30 हुए हैं। ये समय है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनने का। आज आप इसकी 12वीं कड़ी सुनेंगे, जिसमें मुख्य गायक स्वर रविंद्र साठे का है।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज आपने इसकी 12वीं कड़ी सुनी, जिसमें मुख्य गायक स्वर रविंद्र साठे का था। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 6:40 हुए हैं। ये वक्त है कुछ पुराने फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने का। कार्यक्रम का नाम भूले बिसरे गीत। सबसे पहले आइए सुने मुकेश की आवाज में ये गीत, जिसे शैलेंद्र ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया। ये गीत है फिल्म यहूदी से।

0: श्रोताओं, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद अगला गीत आप तक पहुंचाएंगे।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
5: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
4: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
6: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
5: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
7: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: लव इन टोक्यो, ये है फिल्म का नाम, जिससे अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की ये बोल है, जिसे संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

आस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं। आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: 20.
1: और आइए अब सुनते हैं जल बिन मछली नित्य बिन बिजली फिल्म से लता जी का गाया हुआ ये गीत, जिसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया।

अभी श्रोता कुछ पुराने फिल्मी गीत सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी सागर। श्रोताओं अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिनका अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आइए संस्कृत में समाचारों के लिए हम कुछ पल प्रतीक्षा करते हैं।

0: हरी पत्तियों और तीखे शूलों के बीच मुस्काती मदगाती हुई कलियों के होंठों पर कल पूरा सुमन बन जाने की जो आशा होती है वो कभी कलियों को देखने से महसूस की जा सकती है। कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद भौरे को रसपान करने का स्वर्णिम अवसर का जो सहारा होता है वो भी शायद आशा ने ही दिया है। बसंत के गीत गाती कोयल के जो स्वर हैं उनमें आशा की मधुर ताने भरी हुई हैं। तभी तो जब कोयल बोलती है तो हम सबको मोहित कर देती है। हम सब कोयल की कूक सुनना पसंद करते हैं। लहलहाती प्रकृति के हरित पट में आशा का बहुत गहरा रंग भरा हुआ है। श्रोताओं, कभी ध्यान से देखिए ऊंची सुदूर उड़ान के पक्षियों को। उनके उड़ने में जो मस्ती स्वच्छंदता दिखाई पड़ती है उसी से तो आशा बलवती है। हम किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ऐसा संदेश देते हुए ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हमें समझना होगा कि निराशा जीवन का बंधन है, ये एक दुख है, ये एक जंजीर है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। हर हाल में खुश रहना सीख कर देखिए जीवन कितना आसान लगता है। किसी को दुखी करना, किसी के बारे में बुरे विचार रखना, ये हमें स्वयं को ही परेशान करते हैं। पूरी दुनिया और इंसान की जिंदगी केवल उम्मीद पर ही टिकी है। अगर जीवन में आशा या सकारात्मक सोच ना हो तो जरा सोच कर देखिए जिंदगी कितनी नीरस है, कितनी व्यर्थ है। बिना आशा के जिंदगी बिना तारों की वीणा जैसी है। जिंदगी में कोई भी इतना स्थायी पल नहीं होता जिसके पीछे हम अपने जीवन की इतनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी के तारों को सजाइए और छेड़िए एक मीठी रागनी, क्योंकि जो पल हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं वो भी तो निकल जाने हैं। हमें ऐसा अच्छा माहौल बनाना चाहिए जिससे वातावरण चहक उठे, आसमान के सितारे भी झूम उठें। सच मानिए हमारा सजीव व्यक्तित्व आशा के मनोहारी संगीत पर थिरक उठता है। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, और ऐसा करने से केवल हम ही खुश नहीं होते बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी आनंदित होता है। जो लोग जानते हैं कि हम माहौल को खुशगवार करेंगे वो तो खुश होते ही हैं, और जिन्हें हमसे ऐसी उम्मीद नहीं होती वो भी एकदम हैरान होकर आनंदित हो जाते हैं। जीवन की डोर है आशा और विश्वास, इसे कभी मत छोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आज सुबह सुबह बस इतना ही। अनुमति दीजिए साहिबा को, अब से थोड़ी ही देर बाद हम आपको सुनवाने वाले हैं कृषि संकेत का ये अंक, जिसमें खेत बचाओ के अंतर्गत बात होगी मिट्टी परीक्षण से संबंधित। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MP दुबे। आइए सुनते हैं कृषि संकेत का ये अंक।
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम आप सभी को विदित है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम संचालित है। इसका जो मूलभूत उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, खेत में जो मिट्टी है उसको बचाना, उसको संरक्षित करना और आने वाले समय में उसमें सफलतापूर्वक फसलों का उत्पादन लेना। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी वनस्पति या किसी फसल की कल्पना करते हैं तो आप तीन आधार मुख्य रूप से पाएंगे। पहला बिंदु होता है जमीन, जिसको हम खेत का नाम देते हैं। दूसरा होता है वातावरण, जलवायु, मौसम और जलवायु। तीसरा कारक होता है बीज। इन तीनों के बगैर किसी भी फसल की, किसी भी वनस्पति की कल्पना संभव नहीं होती है। तो जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है जमीन, इसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन की ओर से, भारत शासन की ओर से इस मौसम में सामूहिक रूप से तवज्जो दी जा रही है। गर्मी का मौसम है, फसल कटाई के तुरंत बाद हम मिट्टी के स्वास्थ्य को जांचते हैं, परखते हैं। उसके लिए हमको मिट्टी का नमूना लेना होता है। उसके दो तीन बिंदु मैं बताना चाहूँगा कि एक तो मेड़ के नज़दीक से नहीं लेना है मिट्टी का नमूना, दूसरा जहाँ से पानी बहता हो आंशिक रूप से या लगातार खेत में, तीसरा अगर कहीं वृक्ष है तो उसके नीचे से आपको सैंपल नहीं लेना है, और फसल कटाई के तुरंत बाद उसमें

0: जो नरवाई या जो फसल के अवशेष हैं या कचरा है उनको हटा के ही आपको मिट्टी का नमूना लेना है, और उसमें लगभग हम 9 से 10 इंच का गहरा गड्ढा करते हैं, अंग्रेजी के भी आकार का गड्ढा होता है, तो जितनी मिट्टी भी आकार को बनाने में, गड्ढे को बनाने में निकलती है उसको एक तरफ कर दीजिए, किनारे हैं दोनों तरफ के भी आकार का जब गड्ढा बनेगा तो उसमें आपको दोनों किनारों से मिट्टी को खरोंच के पॉलीथिन पर या कागज पर रखना है। अगर आपको एनपीके मुख्य पोषक तत्वों की जांच करना है तो आप इसको पॉलीथिन के बैग में रख सकते हैं सीधे। एनपीके के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जांच कराना है तो इसको कुदाली से ना लेके लकड़ी कुदाली टाइप की बना ले, उसको पैना करके और उससे निकाले, मतलब धातु नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें लोहा आ जाएगा तो लोहे की जो मात्रा है ना वो ज्यादा आएगी। एक एकड़ में कम से कम 8 से 10 जगह रैंडम ऐसे स्थानों से लें कि जिसमें आपको लगे कि पूरा खेत हमारा एक एकड़ का कवर होता है। इसके बाद हर गड्ढे से लगभग आधा किलो मिट्टी लेना है तो इसको कागज पर या कपड़े पर बिछाएं, किसी प्रकार की प्लास्टिक की पॉलीथिन उपयोग ना करें। इसके बाद क्या करें कि उस मिट्टी को, उसमें से कंकड़ मंकड़ या जो भी ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी नहीं है उसके अलावा उनको बाहर कर दें और तमाम 10 पैकेट जो हमने एक एकड़ से लिए हैं उनको मिला लें, हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं ना उनको गड्ढ कर लें। इसके बाद 4 हिस्सों में उसको बांट दें, आमने सामने के 2 हिस्से अलग कर दें और आमने सामने के 2 हिस्से जो बचेंगे उनको मिला के फिर यही प्रक्रिया जब तक अपनाएं तब तक जब तक कि आधा किलो मिट्टी शेष ना रहे। इस प्रकार से आधा किलो मिट्टी बचने के बाद उसमें एक टैग लगाइए, थैली के अंदर डालना है, कपड़े की थैली के, उसमें खेत का नाम, खसरा नंबर, कौन सी फसल ली थी, सिंचित अवस्था में ली थी या असिंचित में ली थी, अगली फसल कौन सी लेना चाहेंगे सिंचित में कि असिंचित में, और अगर संभव हो तो कौन सी वैरायटी आप बोना चाहेंगे जिसमें हमको पता रहता है कि उसमें पोषण तत्वों की क्या व्यवस्था होगी, गांव का नाम, पटवारी हल का नंबर, खेत का नाम जो प्रचलित है, ऐसी कुछ बेसिक जानकारियां उस टैग में लिख के डाली जाती हैं और उसको समय पर आप स्वयं या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उसको मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करें और इसका परीक्षण करवा के रख लें, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी की तासीर कैसी है, अम्लीय तो नहीं है, क्षारीय तो नहीं है, उसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति कितनी है, कोई कम है, जैसे नत्रजन अक्सर हमारे यहाँ कम होती है, फास्फोरस तो उससे भी कम होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से ये देखा गया है कि हमारी मिट्टियों में अब नत्रजन, स्फोर और पोटाश की मात्रा सनह सनह बढ़ती जा रही है, मतलब जमीन हमारी स्वास्थ्य के प्रति कहना चाहिए प्रगति है, परीक्षण से सही पता चलता है कि हमारी मिट्टी को कौन सी आवश्यकता है, तो ये सबसे पहले ये काम करें। दूसरा, अभी खुला मौसम है तो इस मौसम में मेड़बंदी जरूर करें, जिसमें आपकी जो अमूल्य धरोहर है, जो प्राकृतिक संसाधन ईश्वर ने आपको नवाजा है, दिया है, उसको सुरक्षित करें, क्योंकि यही मिट्टी का टुकड़ा आपके परिवार का भरण पोषण करता है। आप मेड़बंदी कर लें जिससे आने वाले समय में जो बारिश होगी उसमें आपके खेत की मिट्टी खेत में रहे, बहे ना, कि किसान भाई इन दो चीजों को ध्यान रखेंगे निश्चित रूप।
1: खेत बचाओ के अंतर्गत मिट्टी परीक्षण की जानकारी अभी कृषि संकेत कार्यक्रम में आपने प्राप्त की। विशेषज्ञ थे डॉक्टर MP दुबे, और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पूरह परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी की और प्रदेश में आज करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती हैं। मेजर बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं और लेबनान में यूएन शांति मिशन में तैनात हैं, जहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर उनकी जिंदगी बदली है। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, जो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने होंगे। दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में भाजपा के 164 और कांग्रेस के 63 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। दो सीटें जीतने के बाद भाजपा के पास करीब 48 वोट बचेंगे, इसलिए तीसरी सीट के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल उच्चस्तरीय बैठक लेकर सुरक्षा, आवास, यातायात और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी और CBI इस मामले की जाँच कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच शिविर का कल समापन हुआ। उन्होंने कहा कि जांच में आए हर मरीज का रिकॉर्ड तैयार कर आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा,
1: हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी कैंसर की संख्या तो सर्वाइकल कैंसर, और ये भी बहुत गंभीरता से फैलने वाली बीमारी। मैं जानता हूँ कि बहने बेटियां संकोच करती है। यह सर्वाइकल बीमारी किसी और वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है, और इसे मैं हाथ जोड़कर सभी परिवारों से अपील करता हूं, मीडिया के माध्यम से भी हाथ जोड़ के, कि अपनी 14 साल तक की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की रत्नामाला ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: मैं अपने समूह की बुककीपर हूँ, जिसका भी मुझे मानदेय मिलता है। पहले मेरे घर छोटी सी किराना दुकान थी, लेकिन समूह से लोन लेकर अब उसमें अधिक सामान रख लिया है और दुकान भी बड़ी हो गई है। समूह से जुड़ने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है पैसे के लिए, स्वयं की पूर्ति स्वयं के द्वारा ही हो जाती है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में दूधी लकड़ी से बने पारंपरिक खिलौनों को भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
4: बुधनी की पहचान विशेष रूप से रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों हस्तशिल्प उत्पाद के लिए है। कारीगर मुलायम लकड़ी विशेषकर दूधी तथा अन्य स्थानीय लकड़ियों का उपयोग करके खिलौने तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को पारंपरिक खराद मशीन पर आकार दिया जाता है और प्राकृतिक रंगों व लाख से आकर्षक रूप दिया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों को विपणन प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
5: मेरा नाम सुनीता

0: विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
1: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं। इससे अब खिलौने आकर्षक और कम समय में तैयार हो रहे हैं।
2: बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। यही कारण है कि देश और विदेश में इनकी मांग बढ़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से मैं प्रदीप सिंह चौहान।
3: भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानीरा समागम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद और इक्वाडोर के राजनयिकों ने प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश में अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 3,66,000 तक पहुँचने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 12 से 18 जून के बीच प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज से 12 जून तक 22वां हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव आयोजित होगा। ये महोत्सव रंगमंच के शिखर पुरुष हबीब तनवीर की पुण्यतिथि में हर साल मनाया जाता है। प्रदेश में मॉनसून आने से पहले ही जून महीने में कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। भोपाल, आगरमालवा और शाजापुर में 2 इंच, नीमच में 2.5 इंच पानी गिर चुका है। कल मॉनसून महाराष्ट्र पहुंच गया और अब अनुमान है कि प्रदेश में ये 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आज ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा सहित करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के मझौली में आयोजित गौंड समाज के जनजातीय महासम्मेलन में कल जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगर मालवा जिले के 20 गांवों में पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 20 गांवों में नलकूप खनन की स्वीकृति मिली है। नर्मदापुरम जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 जून को शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इंदौर में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दतिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जिले में योग जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शाजापुर में कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं कटनी जिले में भी ग्राम पंचायतों में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के करैरा में नवीन एसडीओपी कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह कल संपन्न हुआ। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी हो गई है। इस चरण में 1,25,917 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून के बीच प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा सीट निरस्त हो जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम मन चाहे गीत का। इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत फिल्म सागर से है। जी हाँ, आज डिंपल कपाड़िया जी का जन्मदिन भी है और हमारे श्रोताओं ने उन्हीं की इस फिल्म का गीत भी अनुरोध के रूप में हम तक पहुंचाया है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, आरडी बर्मन का संगीत और इन तमाम श्रोताओं ने सुनना चाहा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद और तरुण यादव, बोरखेड़ा पितरामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश और ग्राम विनय का, तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद्र सेन, संगीता महेंद्र, रामदेवी सेन, सुरेंद्र सेन, नंदिनी सेन, रिया, गौरव राज, आर्यन, कौशल, दीप्ति, फजलिका पंजाब, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल और शालिनी, साथ में टिवानाशी खेड़ा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन, कुमारी भाव्या और प्रियांश देवांगन। आप सबकी फरमाइश पर ये पहला गीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: दो रास्ते, अगला गीत इस फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। हमारे इन श्रोताओं का अनुरोध है, ग्राम भोईना पार लाटाबोर्ड ज़िला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई, गंगाराम साहू, मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज फाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, श्री रामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना, कोयले बस्ती पुनावले से अनुरोध करता है अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, साथ में अविका सोनवणे और साइशा सोनवणे, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोगों की।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं फिल्म नागिन के इस गाने के साथ, जिसको आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया, वर्मा मलिक ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सजाया और आप सबने अनुरोध हम तक पहुंचाया। नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, यवतमाल, विदर्भ महाराष्ट्र से ये अनुरोध संतोष खट से और विनोद खटसे का।

अगर तुम ना होते। इस फिल्म का ये शीर्षक गीत अब आप तक पहुंच रहा है, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, गुलशन बावरा ने गीत को लिखा है, आरडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है और हमारे इन श्रोताओं ने सुनना चाहा है। पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से अनुरोध है, चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, जयपाल यादव। और चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा, श्रीमती विमला अनेजा। दतरंगी से भागवत वर्मा, रुद्र वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा। वाराणा शाहपुर पनहाला जिला कोल्हापुर से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, अंकिता चौहान, अनिकेत चौहान। कल्याण मुंबई से ये हैं डॉक्टर सूरज सुर्वे, नमिता सुर्वे, प्रकाश सुर्वे। और धायरी वड़गांव पुणे से विजय कांबले, बेबी शौर्या, श्रेयश और अंकिता कामले। रमाबाई कॉलोनी घाट कोपर मुंबई से वैभव चौहान, आभीर चौहान, भीमराव चौहान और सुजाता चौहान। आइए सुने ये गीत।

और अब अनुरोध पूरा करते हैं इन तमाम श्रोताओं का। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, श्रीमती शीतल, गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका वाणी, पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, अडार नाथ घाट, छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल, लखवीर, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण, शीतल, नवीन और निशान, अनमोल,

हमारे बेटे चटकू मटकू और उनके परिवारजन। आइए सुने चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में ये गीत फिल्म परवरिश से आशा भोसले और साथियों की आवाज़ मजरू के बोल।

अभी श्रोता सुन रहे थे मन चाहे गीत कार्यक्रम एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी सागर है। 7:45 हुए हैं। समय है संगीत सरिता का। इसका आगाज कर रहे हैं तलत महमूद की आवाज में गजल के साथ, जिसको लिखा नूरजहां बेगम ने। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन गजल।

0: ആകാശവാണി 890.
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: मेरी तस्वीर किताबों में छुपा दी तूने, बात जो दिल में तेरे थी वो बता दी तूने। आइए सुने राजकुमार रिजवी को।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और अब चलते चलते परवेज मेहती की आवाज में ये गजल।

और अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। इजाजत दीजिए साहिबा को। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसका अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। इंतजार थोड़ा सा।

0: घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं

0: में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण

0: पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591

0: रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 8:15 हुए हैं। ये वक्त लोक संगीत का है। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राजू पटेल और साथियों के स्वर में ये गणेश वंदना।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: आइए अब सुनिए बद्री प्रसाद खरे से ये लोकगीत।
6: को जाने रे भगवान तुम्हारी।
5: आप सुन रहे हैं ये लोक भजन।

अभी श्रोता लोक संगीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आपने कुछ बुंदेली लोक भजन सुने। एफएम प्राइम पर ये आकाशवाणी सागर है। 8:30 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम बिंदिया का।

सखियों नमस्कार। बिंदिया कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी हंसती मुस्कुराती प्यारी प्यारी सखियों का स्वागत है आप सभी के और हमारे हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम में। भाई सुबह होते ही, खास तौर पर सोमवार की सुबह होते ही हमारी सभी सखियां बेसब्री से इंतज़ार करती हैं और अपना छोटा सा ट्रांजिस्टर या रेडियो या फिर मोबाइल में ही सुनने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। इसलिए हम भी बिल्कुल अपने वक्त पर आ जाते हैं अपनी पसंद की सारी बातें लेकर। और जब हम मिलने आ ही गए हैं सखियों तो देर बिल्कुल नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं एक एक करके आज की हमारी प्यारी प्यारी सी बातों का सिलसिला। तो सखियों ये बात तो तय है कि जैसे जैसे समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, बिल्कुल वैसे ही मौसम भी अपने समय से बदलता है, क्योंकि समय का जो चक्र है वो तो अपने समय से चल ही रहा है ना। इसलिए सखियों खूब गर्मी हुई अभी, और अभी गर्मी तो हो ही रही है लेकिन फिर भी मौसम बदलने की तैयारी है। दो चार दिनों में बारिश आने ही वाली है, एक दो दिन या दो चार दिन पहले हमने देखा भी कि दो चार बूंदें तो पड़ ही चुकी हैं और थोड़ा तो ठंडक का एहसास करा ही गई है ना। वास्तव में होता क्या है सखियों कि जब मौसम बदलता है तो प्रकृति में भी काफ़ी बदलाव होते हैं। गर्मी में जहाँ पत्ते पेड़ों से गिरकर अलग हो जाते हैं, वहीं बारिश का मौसम आते ही चारों ओर हरियाली, नई नई कोपल, नई नई पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर ये वो मौसम है सखियों जब प्रकृति अपना श्रृंगार करने को तैयार है, सजने संवरने को तैयार है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये मौसम खाने खिलाने का भी होता है। सखियों क्या हुआ कि एक सखी हमारी कल हमसे मिलने के लिए आई, बातों बातों में कहने लगी कि बारिश का मौसम आने वाला है, खाने पीने का सब सामान धूप दिखा के सुखा के रख लिया है हमने, दालें पापड़ मिर्ची सारे मसाले, बस चना दाल सुखा तो ली है, बस पिसवा के रखनी बाकी है। तो हमने पूछ लिया कि भाई चना की दाल पिसवा के क्यों, तो हंसते हुए बोली अरे बारिश होगी तो चाय के साथ बेसन की पकौड़ी तो चाहिए ना, तो इसमें पकौड़ी है, बेसन के चीले हैं, मूंग दाल की मंगोड़ी है, यानी तले हुए भोज्य पदार्थ अच्छे लगते हैं, खाने का भी मन करता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में या गर्मी के दिनों में खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, बस ठंडी चीज़ें हैं, ठंडे पेय पदार्थ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बारिश में थोड़ा हो जाता है खाने खिलाने का। तो सखियों खूब आनंद ले आप इस मौसम आने वाले मौसम का, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखने की भी होती हैं, जैसे सफाई रखना ज़रूरी हो जाता है, संतुलित आहार लेना ज़रूरी हो जाता है। चूँकि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है इन दिनों, तो घर का बना हुआ ताज़ा खाना है, और बारिश के मौसम में अक्सर बच्चे पानी में भीग कर आ जाते हैं, तो उनको भी ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि कई बार बारिश में भीगना समस्या भी खड़ी कर देता है, सर्दी जुकाम तो होता ही है, त्वचा संबंधी समस्याएं भी पनपती हैं इन दिनों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। खासतौर पर पीने के पानी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है जिसमें मक्खी मच्छर ना पनपने पाएं। और जैसे छत है, खिड़कियों में है, कहीं दीवारों पर है, रिसाव की स्थिति समझ में आ रही है, तो अभी समय रहते उसके लिए मरम्मत करा ली जाए तो तुरंत होने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। ऐसे ही नालियों की निकासी है, बिजली के तारों की या उपकरणों की कोई समस्या है तो उसे भी ठीक करा के रख लेंगे तो कोई खतरा होने की संभावना नहीं होगी। एक बात यह कि आजकल हमारी सखियां और बालिकाएं भी गाड़ी चलाती हैं, चार पहिया वाहन भी चलाती हैं, तो उनको भी बारिश के आने से पहले दुरुस्त करा के रख लें। यदि कोई छोटी मोटी समस्या है भी तो उसे अभी दिखा लें। साथ ही छतरी है, रेनकोट है, इनको भी पहले से निकाल कर साफ करके रखा जा सकता है। और यदि कहीं बाहर जाने का प्लान बन रहा है, कहीं घूमने की योजना है, तो ऐसी जगहों का चुनाव करें जहां जल भराव की स्थिति ना हो, और मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी यदि दी जा रही है तो उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही किसी बड़े परेशानी को न्यौता दे सकती है। इसलिए थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत होती है सखियों, तभी हम इस मौसम का पूरा आनंद ले सकेंगे। चलिए कार्यक्रम में आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

चलिए सखियो, ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हमने फिल्म दलाल से। और आइए हमारी आपकी बातों के क्रम में बात करते हैं दिन विशेष की। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस यानी रंगहीनता एक ऐसा विषय है सखियो जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। 13 जून को मनाए जाने वाला ये दिवस यही बात करता है कि जिन लोगों की त्वचा का रंग थोड़ा सा सांवला है या थोड़ा सा डार्क है तो उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए या उनके प्रति कोई गलत धारणा ना बनाई जाए, इस बात के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि एल्बिनिज्म एक जेनेटिक स्थिति है सखियो, आनुवांशिक है ये, जिसमें शरीर में मेलानिन की जो एक तरह का रंग द्रव्य होता है सखियो, या तो उसकी कमी होती है या फिर उसकी अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण त्वचा का रंग या बालों का रंग और आँखों का रंग सामान्य नहीं होता, थोड़ा सा हल्का होता है। और हाँ, कई बार विज़न की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। मेलानिन की कमी के कारण विज़न की समस्याएं भी हो सकती हैं सखियो, और इन सब बातों को लेकर कई बार समाज में भेदभाव की स्थिति देखने को मिलती है। खासतौर पर यदि कहा जाए तो बालिकाओं को और महिलाओं को ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है। कई बार ये चीज़ों से वंचित रह जाती हैं वो, कई बार चीज़ों से वंचित कर दी जाती हैं वो। तो सखियो, प्रभावित लोगों के अधिकार क्या हैं, सम्मान और समाज में हर तरह की समानता उन्हें मिलनी चाहिए, जो हर एक नागरिक के सामान्य अधिकार हैं वे उन्हें मिलने चाहिए। इस तरह ध्यान आकर्षित करता है ये दिन, क्योंकि रंगहीनता कोई बीमारी तो है नहीं सखियो, ये तो बस एक आनुवांशिकता है जो एक छोटी सी कमी की वजह से होती है। तो सखियो फिर इतना फर्क क्यों करना, है ना।

चलिए सखियो, इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम बिंदिया में। और अब हम बात करेंगे ज्योति पुंज की। सुमन कल्याणपुर हिंदी पार्श्व गायकी का एक ऐसा नाम सखियो जिन्होंने अपनी उम्र भर पूरे संगीत को दे दिया और अभी 31 मई को ही इस दुनिया को अलविदा कहा। हाँ सखियो, सुमन कल्याणपुर आज की ज्योति पुंज हैं जिन्हें आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से याद कर रहे हैं और श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं। सखियो, सुमन कल्याणपुर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 28 जनवरी 1937 को ढाका में जन्मी सुमन हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी ऐसी कई भाषाओं सहित और भी कई भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। सखियो, 1960 के दशक से लेकर 70 तक उन्होंने अपनी मधुर आवाज से सभी के मन को मोह लिया और एक अलग पहचान बनाई। बता दें आपको कि बचपन का नाम उनका हेमाड़ी था, जिन्हें सबसे पहले 1953 में मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाने का मौका मिला था और 1954 में हिंदी फिल्म मंगू के लिए उन्होंने लोरी गाई। उसके बाद सखियो, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगभग 3000 गीतों में अपनी आवाज़ दी, और जिनमें फिल्मी और गैर फिल्मी दोनों तरह के गीत शामिल हैं, जिनमें मिठास इतनी सखियो कि आज भी सुनने पर दिल की गहराइयों तक पहुंचते हैं। चूंकि वे शास्त्रीय संगीत की समझ भी रखती थीं, सुरीली आवाज़ और विस्तृत रेंज खासियत थी उनकी, जिससे उन्होंने गायकी के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया।

0: इसी वजह से उनके योगदान को सन 2023 में पद्म भूषण जैसे सम्मान से नवाजा गया सकियो। उनके द्वारा गाए गए गीत, चाहे वो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर हो, चाहे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, चाहे तुमने पुकारा और हम चले आए, या फिर न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, या पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा ही क्यों ना हो, हर वो गीत जिसमें सुमन कल्याणपुर ने आवाज दी मील का पत्थर साबित हुआ सखियो। तो सखियो, इस मौके पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज, उनके गाए हुए गीत भारतीय संगीत की धरोहर हैं, इसलिए हमेशा वे हमारे दिल में बसे रहेंगे। आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा एक गीत।
1: इस बांसुरियों में जो मुझ में

चलिए भाई, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा मीठा सा गीत अभी हमने सुना सकियो। और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की, जो 12 जून को हर साल मनाया जाता है। सखियो, इसकी शुरुआत सन 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। चूँकि किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है सखियो, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है ना। तो इसके पीछे भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित बचपन, खुशहाल बचपन, यही सब कारण रहे सखियो बाल श्रम के विरुद्ध दिवस।

0: निर्धारित करने के पीछे, और बालश्रम की समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, दुनिया के हर बच्चे को बालश्रम से मुक्त कराना, बालश्रम को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और आवश्यक कदम उठाना, यही उद्देश्य रहे बालश्रम निषेध दिवस मनाने के लिए। क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है सखियो, हर बच्चा पढ़ने लिखने का अधिकार रखता है। यदि बचपन से ही हम उसे काम में लगा देंगे, मजदूरी कराएंगे, तो वो शिक्षा से तो वंचित रह ही जाएगा, उसका विकास भी रुक जाएगा। कई बार शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से असर होता है बच्चों पर, और ये बात हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, पढ़ता लिखता है, तो वो आत्मनिर्भर बनता है, उसके भीतर आत्मविश्वास पनपता है, सम्मान से जीना सीखता है और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनता है, अच्छे बुरे में फर्क करना सीखता है सखियो। इसलिए किसी भी बच्चे को यदि हम श्रम करते हुए देखें तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि उसे उसका अधिकार दिलाएं, उसके लिए प्रयास करें, है ना। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जरूरी है सखियो, थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है, थोड़ा सा सजग होना जरूरी है, थोड़ा सा जिम्मेदार होना जरूरी है। चलिए यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटकर फिर बड़ा ही अच्छा सा विषय शामिल करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: चलिए सखियों, इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और ऐसे विषय पर अब हम बात करेंगे जिस पर हम चाहते हुए भी सामान्य तौर पर बात नहीं करते हैं सखियों, नशा मुक्ति। सखियों, नशा मुक्ति भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य सामान्य जन को जागरूक करना है और युवा वर्ग को नशे के द्वारा होने वाली हानि से वाकिफ कराना है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है। सखियो, समझाइश दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति नशे की लत में पड़ ही गया है तो उसे पुनर्वास की सुविधा कैसे उपलब्ध कराना है, आम जिंदगी की तरफ वो लौट कर कैसे आ सकता है, परिवार उसकी मदद कैसे कर सकता है, समाज कैसे सहयोग कर सकता है, यही सब बातें इस अभियान में बताई जाती हैं। तो सखियो, अब और वक्त नहीं है कि हम और बातें साझा करें आपसे, इसलिए हम यही अनुमति लेंगे इसी वादे के साथ कि अगले सोमवार को इसी वक्त फिर हाजिर होंगे ढेर सारी प्यारी सी बातें लेकर। तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप सुनती रहिए आकाशवाणी सागर।

बिंदिया। अभी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से किया जाएगा। आइए इंतजार थोड़ा सा करते हैं।

0: आपका फिर से बहुत स्वागत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: मुंडे कुड़िया

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: दोस्तों आज 8 जून है, वर्ल्ड ओशंस डे, विश्व महासागर दिवस। आज पूरा विश्व महासागर दिवस मना रहा है। कहा जाता है यदि पृथ्वी का हृदय कहीं धड़कता है तो वो महासागरों में धड़कता है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागर से घिरा है। ये महासागर हमें वर्षा, जलवायु, भोजन और ऑक्सीजन का संतुलन प्रदान करते हैं। आज महासागरों में बढ़ता प्रदूषण, खास तौर से प्लास्टिक, एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो महासागरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। विश्व महासागर दिवस मनाने का ये उद्देश्य है लोगों को महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को ये याद दिलाना कि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाकर हम महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अब एक और संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रमण ने धुन बनाई थी।

अभी आप सुन रहे थे मलाल फिल्म का गीत, ऋत्विक तलाशिखर की आवाज़ थी, प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा था, संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए सविता सिंह को इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके,

जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

0: के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। सुस्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी
1: आकाशवाणी सागर है, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।
2: श्रोताओ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मनोपचार सुखी संसार कार्यक्रम में। मैं हूँ मनोज सक्सेना और हमेशा की तरह मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भोपाल के जाने माने न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। आइए आज के कार्यक्रम में आज की बातचीत को हम फिर शुरू करते हैं। सर नमस्ते।
3: नमस्कार श्रोताओं।
2: सर आज किस विषय पर हम बात करेंगे?
3: विषय देखिए, हाल ही में 5 तारीख को जी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और ये सप्ताह मनाया जाएगा। तो कई बार सवाल पूछा जाता है हमसे और हमारे मन में भी उठता है कि क्या हम गलत दिशा में जा रहे हैं, क्यों इतनी मेंटल और फिजिकल इलनेसेस हो रही हैं जबकि साइंस इतना एडवांस हो गया है, इतनी हॉस्पिटल्स हो गई, इतनी रिसर्च हो गई सब कुछ। तो कई बार कुछ क्वेश्चन भी खड़े होते हैं कि क्या हम जो हमारा पर्यावरण है उसके साथ बहुत ज्यादा ही छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या, क्योंकि हम भी उसका एक अंग है। तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो हमारे अंदर भी गड़बड़ होगी। और कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी एंजाइटी है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस हॉर्मोन है, उनका हमारे आसपास के एनवायरमेंट से रिलेशन है। जैसे आप बहुत ही अच्छी आबो हवा में रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, कुछ गार्डनिंग करते हैं या फिर आप पेड़ पौधों की सेवा करते हैं या खेतों में आप, तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम हो जाता है। हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं या फिर बगीचे में हम बैठते हैं या बहुत तरोताज़ा हवा लेते हैं, तो उससे हमारे कई हार्मोनल इम्बेलेंसेस ठीक होते हैं, उसमें स्ट्रेस हार्मोन भी कम होता है। तो अब स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो मेंटल कामनेस आती है, मेंटल कामनेस आती है तो आपकी एंजाइटी डिप्रेशन ये कम होंगे और आपको बहुत हेल्दी फील होगा, मन करेगा कि आप कुछ कर लें, क्योंकि नेचर एक ऐसा चुंबक है, वो अपने आप आपको, जैसे अपन जाते हैं कहीं तो बहुत खेलने कूदने का मन करता है कि हम लोग वैसे तो वॉक नहीं करते हैं, लेकिन आप पहाड़ों में जाके 10-10 किलोमीटर ट्रैक कर लेते हैं और आपको कुछ होता भी नहीं है,
2: बिल्कुल सच है,
3: क्योंकि वो नेचर ही आपको अपने में सिमुलेट कर लेता है। तो यहाँ भी यही खेल है कि नेचर को हम यदि शांति से रहने देंगे
2: जी
3: तो हम भी शांति से रह पाएंगे।
2: सर ये वाकई बहुत ऐसा विषय है जिस पर कि बहुत बात होती है, और जब मनोरोग की बात की जाए
3: जी
2: कि मानसिक स्वास्थ्य का पर्यावरण से क्या रिश्ता है, तो आपने उसकी भूमिका जैसे बताई

0: कि अगर आपका पर्यावरण अच्छा है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी स्वतः ठीक होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में जो मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव जा रहे हैं वो किस तरीके से गंभीर हो सकते हैं?
1: देखिए, हम जब भी हमारे आसपास कोई नेगेटिव एक्टिविटी होगी तो उससे हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होती है, हमारे अंदर एक अनसर्टेनिटी डेवलप होती है कि यार क्या होगा, ऐसे ही होता रहा तो भविष्य में बहुत ज़्यादा चिंता वरी हमारे अंदर आ जाती है कि ऐसे में तो फिर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है। जो प्रोटेक्शन है हमारे आसपास, जो प्रकृति अपने गोद में हमें रखती है, वो गोद ही हम उजाड़ रहे हैं।
0: सच बात।
1: तो उससे स्ट्रेस बहुत बढ़ती है और ये कई स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जहाँ एनवायरमेंट को नुकसान ज्यादा हो रहा है, जैसे पर्वतों पे जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होते थे वहाँ भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो हम जब नेचर के रूल्स तोड़ रहे हैं, नेचर को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को हम संरक्षित नहीं करेंगे तो हम खुद भी संरक्षित नहीं होंगे। ये जो आशंका है ये दिमाग में बैठ के तरह तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स
0: जी,
1: हताशा, आपको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसके विद्रोह में आप कुछ कर दें, है ना, कई बार लगता है कि आप सरेंडर मार देते हैं कि यार अब तो हम लोग का तो कोई से ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, हम लोग का कोई औचित्य नहीं है, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो ओवरऑल आपको कई तरह के मानसिक रोग होने की रिस्क बढ़ जाती है और ये कई स्टडीज में प्रूव हो चुका है।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिर दर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यावहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9406925768, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने, 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स, DIG बंगला चौराहा, भोपाल।
3: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी, बरेली, उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
0: वाकई मानसिक स्वास्थ्य पर पर्यावरण का बहुत गहरा प्रभाव होता है। बात हम अंदर के वातावरण की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: आज हमारे जो मन स्थिति है वह भी देखा जाए तो अंदर का जो आपका पर्यावरण है वह भी दूषित है, अंदर से व्यक्ति आंदोलित होता चला जा रहा है
1: जी।
0: ये सब भी कहीं ना कहीं आपके अंतस में एक विक्षोभ पैदा कर रहा है
1: जी।
0: तो बात पर्यावरण से निकली है, हमारे अंतस के पर्यावरण पर भी आप बताइए कुछ।
1: देखिए, उसका भी समझा जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा दिखावे में, बाहरी चमक धमक में लगे हुए, अंदर हमारी जो चमक है या हमारी सुकून है या जो शांति है उसको खत्म कर रहे हैं
0: जी जी।
1: होड़ जो रेट रेस बोलते हैं
0: जी जी,
1: कि इसका अच्छा है तो हमारा और अच्छा होना चाहिए,
0: सही बात,
1: ये ऐसे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है, होड़ लगी जो है दिखावे की, तो उसमें हम चमक धमक में लगे हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, है ना, शीशे लगा रहे हैं और गर्मी और पैदा कर रहे हैं, AC चल रहे हैं, घर में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, सेंट्रलाइज AC आप लगा रहे हो, ये चीजें भी एनवायरमेंट को बहुत गर्म कर रही है। अभी आप बात करते हैं कि समंदर का तापमान आधा से एक डिग्री बढ़े तो बहुत ज्यादा मानसून में परिवर्तन आता है, वैसे ही पहाड़ों का हाल है। तो प्लेन्स में भी इतनी सूखी सर्दी और सूखी गर्मी का मुख्य कारण है हमारे जंगल कम हो रहे हैं। ऑन पेपर भले ही वो दिखा रहे हो ज्यादा, लेकिन जब आप जाते हैं आसपास
0: सही
1: तो आपको साफ समझ में आता है कि यहाँ कमी आ रही है और ये हमारे अंदरूनी जो लालच है, जो होड़ है, उसके चक्कर में मानसिक अशांति, जो हम शांत करना चाह रहे हैं ये दिखावटी काम करके, उसके बदले यदि आप खुद ही सोचें, आप किसी पशु को देखभाल करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि में मदद करते हैं, या किसी गार्डन को बनाने में, या किसी खेत को अच्छा करने में, या पेड़ को सजाने में, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, तो आपको कितनी अंदरूनी शांति
0: खुशी होती है। बिल्कुल सच है।
1: तो असली शांति इन्हीं चीजों में है कि हम अपने आसपास के पशु पक्षियों और प्रकृति के साथ जुड़े, तभी हम शांत रह पाएंगे,
0: उस सद्भाव मन में रखें,
1: क्योंकि हम अकेले इस पृथ्वी के सर्वे सर्वा नहीं है, हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है, हम अपने आप को उससे बहुत ऊपर समझने लगे हैं, यही सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य में कमी, शारीरिक स्वास्थ्य में कमी और ये पर्यावरण में जो दिक्कतें आ रही उसका कारण है।
0: वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है कि उस शख्स की गिनती कैसे इंसानों में हो जिसका घर तो बागीचे में और मन वीरानों में हो। हमें अपने मन को भी बागीचा बना के रखना है। अच्छे संस्कार हो, अच्छी सोच हो, सकारात्मक सोच के साथ हम अपना जीवन जिएंगे।

0: तो वाकई हमारे अंदर भी फूल खिलेंगे, और फिर हम जब अंदर से खुश होते हैं तो सारे चीजें हम अच्छा करने लगते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति से जैसे देख रहे हैं ना कि लोग चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से उग्र होते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर आपसे पूछूं मैं, आप तो एक मनोरोग चिकित्सक हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में व्यक्ति को?
1: ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा सा ठहरना चाहिए, पॉज लेना चाहिए, है ना। हम भाग दौड़ की जिंदगी में होता है ना कि थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं ना कि सरल थोड़ा सा जंगल में कैसे बहुत शांति से हर काम होता है, बहुत रिलैक्स वे में चलता है, ठीक है। तो वही सीखना है, नेचर से सीखना है कि देखो थोड़ा सा ठहर जाओ,
0: ठहर जाओ,
1: थोड़ा सा सोचो, मंथन करो, क्या हम कर रहे हैं, इससे क्या, कितना, कितनी देर के लिए हम खुश रहेंगे।
0: सही बात
1: है ना। तो प्रकृति से सीखें, उसके नियम समझें और उन नियमों को ना तोड़ें। जो व्यक्ति प्रकृति के नियम से चलता है उसका स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, सोशल सारी हेल्थ स्टेबल होती है। जो प्रकृति के नियम तोड़ता है उसकी सारी हेल्थ में डिस्टरबेंस आता है।
0: बिल्कुल सच बात है। मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, हमसे बातचीत कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। मित्रों, आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है या डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं,
2: अभी श्रोता ये प्रायोजित
0: तो आप हमें फोन कर सकते हैं।
2: ये हमारा नंबर है 9406925768। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली की चिट्ठी हमारे भोपाल के।
0: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9406925768। अब हम मिलते हैं आपसे अगले सोमवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत का नमस्कार।

0: प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। मवई विकासखंड के दाढ़ी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल और रात्रि विश्राम कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश रघुवंशी और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। कान्हा टाइगर रिजर्व के इको सेंटर खटिया में वन्यजीव निगरानी को वैज्ञानिक बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मंडला, बालाघाट और डिंडौरी सहित 7 वन मंडलों के 70 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्रतिभागियों को एमएस ट्राइब मोबाइल ऐप के माध्यम से वन्यजीव निगरानी, गश्त और डेटा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही केनाइन डिस्टेम्पर वायरस की रोकथाम संबंधी जानकारी भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण से 6 भागों की मौत के बाद प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। संक्रमण रोकने के लिए मुखी क्षेत्र में लार्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वायरस के प्रसार और बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। लार्ज संचालकों ने आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व में 22 से 24 मई तक ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना की गई। कोर बफर वनमंडलों और पेन अभयारण्य के 13 परिक्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया गया। पहले दिन 306, दूसरे दिन 333 और तीसरे दिन 263 गिद्ध दर्ज किए गए। सर्वेक्षण में भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध और राज गिद्ध की पहचान हुई। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत मंडला पुलिस ने 1 से 6 जून तक 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें पुलिस कर्मियों को भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ डीआईजी विनीत जैन ने किया। कार्यक्रम में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की जानकारी दी गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जन शिक्षण संस्थान मंडला ने मां नर्मदा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों ने घाट की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश क्षत्रिय और निदेशक अखिलेश पांडे ने जल संरक्षण और जन भागीदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 25 से 31 मई तक नो टबैको सप्ताह मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम बताए। जिला नोडल अधिकारी डॉ. रानी महारावी ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। जे सोबा संस्था ने गोंडी पब्लिक ट्रस्ट भवन में आयोजित समारोह में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया। विद्यालय के टॉपर्स और प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिए गए। विश्व साइकिल दिवस पर 148वीं वाहनी सीआरपीएफ ने मंडला साइकिल क्लब के सहयोग से साइकिल रैली निकाली। कमांडेंट विक्रांत सारंग पाणी के निर्देशन में आयोजित रैली का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। रैली में सीआरपीएफ जवानों, स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। रामनगर में आयोजित 2 दिवसीय आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गोंडवाना साम्राज्य की विरासत को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। लोक नृत्य, संगीत प्रदर्शनी और संगोष्ठियां कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रहीं। चुटका परमाणु परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कौंची माल स्थित R&R कॉलोनी में शुरू हो गया है। मंत्री संपतिया उइके ने परिवारों का गृह प्रवेश कराकर प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। प्रभावित 330 परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त नया आवास दिए जा रहे हैं। साथ ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की पहल भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत महिष्मती घाट पर विशेष योग अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर राहुल नामदेव, धोटे सहित अन्य अधिकारियों ने योगाभ्यास किया और औषधीय पौधे लगाए। आयुष विभाग द्वारा 1 जून से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह अभ्यास सत्र 21 जून तक प्रतिदिन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम, MP सेडमैप और परम फाउंडेशन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए केयर थेरेपिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण ITI उत्कृष्टता केंद्र बिछिया में दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार और प्लेसमेंट सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पालिका परिषद मंडला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र हितग्राही ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत घर बनाने, खरीदने और ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और अधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन के लिए हितग्राही नगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: जय शेखर भैया, हमारे तमाम श्रोता भैया रहे इतनी गर्मी में जो है अपने कार्यक्रम की बाट ही रहे हैं कि कैसे बुंदेली अटका और लोकगीत सुन के ठंडक उनको मिल पाए।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे हो। तो भैया मौसम पे आप सब लोग अपने आप को स्वस्थ रखने पे ध्यान दे हो, अगर कभी स्वास्थ्य गड़बड़ होते तो सीधे डॉक्टर को दिखाओ और अपने नजदीकी अस्पताल में जाके अपनो चेकअप करवाओ।
0: और आकाशवाणी सागर से जुड़े रहो, अपने कार्यक्रम को आनंद भी लेते रहो, सुबह ठंडक मिलते रहे।
1: बिल्कुल सही कह गए नीरज भैया।
0: तमाम श्रोता भैया बिन नहरों को खूब ही खूब स्वागत है कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में।
1: हम हैं भैया आपके संगे जय शेखर
0: और हम कहा है नीरज सोनी।
1: स्वीकार करो भैया हम दोइयों की
0: राम राम। तो अब का देरी कहा कार्यक्रम में?
1: कछु देरी नहीं है, अपन लेते हैं जो पहलो फोन। हेलो
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
2: बिल्कुल सर,
1: अपनो नाम बता दो भैया। भैया जालमपुर बंडा के पास है।
2: हाँ बंडा के पास।
1: कहाँ चल रहा है भैया सहदेव भैया? अपनो
2: अपनो गर्मी को पूरा इंजॉय कर रहा है।
1: हाँ हाँ
2: बिल्कुल, गर्मी हमेशा पड़ रही है, कल परो थोड़ी सी बारिश हो गई है तो थोड़ा राहत मिली है।
1: हाँ अच्छा भैया, शौक कहाँ है आपके?
2: शौक सर संगीत ही है शौक सबसे ज्यादा।
1: तो भैया संगीत को शौक बना रहे हो कि रोजी रोटी भी बनावे के चक्कर में हो?
2: बिल्कुल सर आपने सही समझी, एकदम सही समझी।
1: खूब मेहनत करने पड़े हैं आपके लाने?
2: अब कीबोर्ड बजाओ सीख रहे हैं, कीबोर्ड पे बहुत मेहनत तो करनी है।
1: तो अबे तक कितनों बजाने लगे भैया?
2: अबे तक सर हारमोनियम पे रियाज करत रहे अपन, हारमोनियम बजा तो हो गई हमारा ने कम से कम 6-7 साल।
1: अच्छा अच्छा,
2: अब लगा कीबोर्ड, अब तो कीबोर्ड की प्रैक्टिस होने।
1: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सहदेव भैया कछु अपने बारे में बताओ, कैसे हो भैया, क्या कर रहे हो?
2: अब तो फिलहाल घर ही पे है सर जी, बोलता है।
1: तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका।
2: बिल्कुल
1: अटका कह रहा है कि खेती के औजार में अक्षर आए 3, पहलो अक्षर

0: अगर काट देऊ तो सिया राम खो दीन।
1: सिया राम खो दीन
0: हाँ
1: जो का हो जैसा
0: उत्तर यही में छिपो है
1: खेती के औजार अक्षर आम दीन।
0: पहलो अक्षर काट देऊ तो सिया राम खो दीन। चलो भैया बताओ लोकगीत कौन सा सुनवा देवे।
1: चलो लोकगीत सुनने चंद्रभूषण पाठक को बागई सुनो रे कुल बिना।
0: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हेलो।
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं आपके अपने कार्यक्रम फोन करें लोगी सुने में। अपनो परिचय सबसे पहले हम तक पहुंचा दूं।
2: हाँ, कामता प्रसाद दुबे हम बोल रहे हैं सर, धबोली से।
1: धबोली, कामता भैया सुनाओ, धबोली में क्या चल रहा है अपनो?
2: हाँ सब बढ़िया है सर, अभी तो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है।
1: हाँ,
2: कीर्तन चल रही है मंदिर में और हम अपने भागवत में गए सब यहाँ आए हैं।
1: चलो बहुत अच्छी बात हो। किसानी की क्या तैयारी है?
2: अब किसानी की तो बड़े भैया कराते हैं, अपन नहीं कराते हैं।
1: अच्छा, तो आप कौन सी कारज में लगी रहत?
2: हम एक भागवत में जो ऑर्गन बजाते हैं।
1: अच्छा, चलो तो एक कारज हम आपको पकड़ाए दे रहे हैं। जैसी मन लगा के आकाशवाणी से आप जुड़ी रहत हो, वैसे ही अपने संगी साथियों की लाले प्रेरित करने के रेडियो से जुड़ो, आकाशवाणी सागर से जुड़ो, ज्ञान मनोरंजन जानकारी तमाम चीजें लेते रहो। तो हमें उम्मीद है कि कामता भैया जो है कारज को भरपूर मन लगा कर
2: करें। कर हैं सर।
1: चलो अच्छी बात। कामता भैया कछु और कहो चाहत हमारे श्रोता भैयारों से का?
2: भजन करो और अपने एक दूसरे की सहायता करो कि भाई को पानी है तो पानी दे, को कितना कम व्यवस्था है तो अपने व्यवस्था बनवा दे अच्छे से भाईचारे से।
1: बिल्कुल, और एक और चीज सिखात रही हो कि पानी को अपन खुद दुरुपयोग नहीं करने, उपयोग करने कहा।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है, नल चल रहा तो बंद कर दो।
1: हाँ, व्यर्थ पानी नहीं बहाने, अपन को कोशिश करने हैं कि पानी जितना जरूरी है उतना ही उपयोग में आए, व्यर्थ न बह पाए।
2: पानी की तो समस्या है बहुत सारा।
1: बिल्कुल, कामता भैया के माध्यम से बहुत अच्छी बात सब तक पहुँच रही है। अब एक प्यारो सो अटका हम कामता भैया को लेके आए हैं।
2: हाँ बताइए सर।
1: और आज जो पहलो ऐसो अटका है कि अटकई में आपको जवाब जो है छुपो है, मतलब उत्तर अटकई में है।
2: हाँ बते, बन जाए तो बता दे।
1: चलो सुन लू आज को अटका आपसे कह रहा है। खेती के औजार में अक्षर आए तीन।
2: हाँ।
1: पहलो अक्षर काट दियो तो सिया राम खो दीन।
2: हाँ हंस गया है सर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। काम तो भैया कैसे अंदाज लगा लो?
2: जी तो हम जहाँ था सब बहुत अटका जहाँ।
1: अच्छा, परंपरागत है जो पुरानो कहाओ।
2: हाँ हाँ पुरानो।
1: चलो कामता भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और अब लगे हाथ अपनी फरमाइश और हम तक पहुँचा दू।
2: आलोक जैन का जो पानी बचत अभियान है वही लोक गीत सुनो। आलोक,
1: बिल्कुल आलोक जैन को गाओ हो जो बहुत ही प्यारो सो लोक गीत। कामता भैया की फरमाइश पे सभी जने मिलके सुन रहे हैं। कामता भैया ऐसे ही जुड़े रहियो आकाशवाणी सागर से, आपको फोन प्राप्त हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: भैया, फोन करे लोकगीत सुने में स्वागत है। अपना नाम बताओ।
1: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोक नगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव।
0: सूर्य भैया, क्या कर रहे हो आप बहादुरपुर में?
1: सर हम खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहते हैं।
0: अच्छा, तो अबे क्या चल रहा है आपके खेतों में?
1: अबे तो सर धान की तैयारी हो रही।
0: खेतों में भैया कितना टाइम दे दो 24 घंटा में से?
1: सर खेती बाड़ी तो पिताजी घर से मारा थे।
0: हाँ,
1: अपन तो दृष्टि वाले थे तो घर में ही रहते हैं, आपके कार्यक्रमों से जुड़े ही रहते हैं।
0: तो कोई संगीत तंगीत के बारे में कोई रुचि रही है आपने, या कोई ऐसी हुनर सीखो हो जो आप कर सका तो बैठे बैठे?
1: हाँ सर बिल्कुल, हम गात भी हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं।
0: क्या बात कर रहे भैया, बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
1: अच्छा,
0: अटका कह रहा है कि खेती के औजार में अक्षर आए तीन, पहलो अक्षर काट दो तो सिया राम खो दीन।
1: खेती के औजार में
0: हाँ
1: अक्षर छुपे हैं तीन।
0: हाँ,
1: और आगे को का है?
0: पहलो अक्षर काट दो तो सिया राम खो दीन। चलो भैया अब हमें बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवाए आपको, तो गा के सुनाओ हमें, तो ज्यादा मजा आ जाए। है
1: अच्छा सर, लोकगीत उर्मिला पांडे की आवाज में सुनवा दो आप। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ,

0: हेलो,
1: आकाशवाणी से सर।
0: बिल्कुल सही जगह फोन लगो और आपको स्वागत कर रहे हैं। फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी सर, मैं दशरथ बोल रहा हूँ सर, खामखेड़ा।
0: दशरथ भैया सुनाओ, खामखेड़ा में क्या चल रहा है
1: सर? गर्मी चल रही है
0: तो भैया देखो, गर्मी जरूरी भी राहत है। कैसे जब गर्मी पड़ है तभी तो पानी अच्छो गिर है।
1: हाँ सर, पानी
0: नहीं नहीं, अब समय पे गिर है। अब देखो तपा खत्म हो रहे हैं तो अब पानी भी आ है। तो दशरथ भैया सुनाओ, का करत रहा थो? तो हम आपसे एक बात जान वो चाह रहे हैं।
1: हाँ सर।
0: देखो बस कार्य में अबे 10-15 दिन की देरी कहानी।
1: सर
0: अपने सिंचाई तराई के जो साधन रहा थे, कुगा है, छोटी ताल तलंगे है, नरवा है, नालो है अपनो, उनमें जल संरक्षण ज्यादा पानी बरसात को रोके एक इला ने कोनो कार्य आप और करत हो का?
1: सर करत है जो अपने
0: थोड़े से गहरीकरण की भी कोशिश करो करे के जहाँ बड़े पत्थर वत्थर हुए उनको हटा के कछु ऐसी कोशिश करो कि पानी थोड़ो लंबे समय तक रुक सके।
1: एक नरवा तो पानी नहीं ज्यादा।
0: हम तो निवेदन कर रहे हैं कि नरवा आप पूरे गांव वालों के लाने हैं। सब जने मिलके महीना डेढ़ महीना दो महीना हर साल बसकारी के पहले समय दे और रोको अच्छो साफ सफाइयत गहरीकरण करके बोरी वगैरह बोरी बधान करके पानी रोकवे की जो है कोशिश ज्यादा से ज्यादा करो। लंबे समय तक पानी रोके तो किसानी में फायदा मिले। बिल्कुल दशरथ भैया ने बहुत अच्छी बात कह दी। दशरथ भैया
1: हाँ सर।
0: अब आ रहे हैं आज के अपने कार्यक्रम की परंपरा यानी अटका पे।

0: जी सर।
1: आज कोट का आपसे कह रहा है खेती के औजार में अक्षर आए तीन, खेती के औजार में अक्षर आए तीन, पहलो अक्षर काट दियो तो सिया राम खोदीन। भाई ये सो है कि खेती को एक औजार है अपनी किसानी को पहलो अक्षर काट दो तो मतलब आखिरी लाइन बन जाओ थे सिया राम खोदीन।
0: अच्छा सर।
1: नहीं आ रहा हो?
0: नहीं आ रहा सर।
1: चलो कोई बात नहीं, दशरथ भैया अब लगी हाथ अपनी फरमाइश और हम तक पहुंचा दूं।
0: जी देवकी नंदन सुना रही
1: हूं। बिल्कुल आपकी फरमाइश पे देवकी नंदन शकवार को गाओ भाव जो बहुत ही प्यारो सो लोक गीत सभी जने सुन रहे हैं। दशरथ भैया ऐसे ही जुड़े रहो आकाशवाणी सागर से। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
1: जी सर, हम अम्बेडकर चौक से राम सखी बोल रहे हैं सर।
0: स्वागत है राम सखी बिन्ना आपको। तो राम सखी बिन्ना, गर्मी में कैसे रखो अपने आप को स्वस्थ, आपने बताओ थोड़ा सो।
1: सर गर्मी में शरबत खाते हैं, आम का पन्ना,
0: हाँ,
1: और एक दो रोटी खा के निकलते हैं घर से,
0: हाँ बहुत ही सही।
1: और गमछा बांध के चश्मा लगा के वो
0: हाँ।
1: साइकिल से जाते हैं। हम तो रोड ड्यूटी करने जाते हैं।
0: आप खुद चलाती हूँ साइकिल?
1: हाँ साइकिल से जाते हैं सर, 3 किलोमीटर।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मैं तो फिटनेस भी अपनी ठीक रहे थे हैं,
1: जी।
0: और पैसों की बचत होते तो वो अलग, और अपनों शहर प्रदूषण से मुक्त रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है राम सखी बिन्ना। अच्छा राम सखी बिन्ना, एक बात हम बताएं आपको कि आप आंगनवाड़ी में काम करती हूँ और अपने आसपास भी लोगों से बात करती हूँ, तो
1: जी
0: एक बात को ध्यान जरूर रखने और सबको सलाह देने कि अगर कोई की तबीयत खराब अगर हो जाते है, स्वास्थ्य गड़बड़ होते है, तो अपने मन से दवाइयां ना लें हैं,
1: हाँ बताते हैं सर हम लोग।
0: तो उनके साइड इफेक्ट भी नहीं हो पाते हैं।
1: हाँ वो कहते हैं हम लोग के डॉक्टर को चेक करवा फिर दवा खाना,
0: हाँ
1: और अपने मन से नहीं खाना। तो
0: बिल्कुल सही।
1: कई माने गर्भवती रहती हैं तो उनको भी समझाते कि बिना डॉक्टर के दवाई नहीं खाना बिल्कुल।
0: हाँ अब हम आपसे अटका पूछ लेवे।
1: हाँ जी सर पूछो।
0: अटका कह रहा है कि खेती के औजार में अक्षर आए 3, पहलो अक्षर काट दो तो सिया राम खो दीन।
1: इसका उत्तर है सर हसिया।
0: हाओ
1: हसिया तो सिया हो जाए हसिया।
0: बहुत ही सही, सही जवाब दे दो आपने। अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे।
1: लोकगीत है सर वो देवी सिंह राजपूत का, सुना दीजिए चलती वीरा।
0: चलो ठीक है, और सुन लो अपनी फरमाइश पे देवी सिंह राजपूत को गाओ भाओ जो लोकगीत।
1: जी सर।

0: हेलो।
1: हेलो, फोन करे लोग भी सुने।
0: बिल्कुल सही जगह फोन लगो हो और आपको स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी सागर से। फोन करें लोग भी सुने कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर।
0: चलो हरविलास भैया, सुनाओ कछु अपने बारे में, कछु अपने गांव के बारे में।
1: बढ़िया गांव मेरा सामान्य गांव है और मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
0: तो खेती किसानी में आगामी बोने की काय की तैयारी रखे हो?
1: मोटा अनाज होता हमारे यहाँ, बाजरे की फसल होती है।
0: बहुत बढ़िया भैया, एक बात आपसे जानबो चाह रहे हम।
1: बोलिए।
0: पिछले दो चार साल से देखो

0: मोटी अनाज पे चारों तरफ जोर चल रहा है, प्रशासन भी चाहत है कि मोटी अनाज की मांग बढ़े, आप किसान भैया रहे भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी खुद की का अनुभव है, मांग बढ़ रही है मोटा अनाज में, फायदा है कछु
1: नहीं खाने

0: श्रोताओं से बस यही कहना चाहते कि आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते तो एक एक वृक्षारोपण श्रोता लगा उसकी परवरिश करे सबसे अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल हर विलास भैया, और आपके माध्यम से एक बात हम भी कहो चाहते हैं कि वृक्षारोपण केवल वृक्ष लगावे तक सीमित नहीं रहा थे भाई, नहीं अपनी जिम्मेदारी के पेड़ रोप दो और फुर्सत हो गए
0: जी।
1: हमें ये बात को संकल्प भी लेने हैं कि हम पेड़ रोप भी यानी वृक्षारोपण के संगे संगे जब तक वो वृक्ष को अपनी हाइट बरूबर अपनी ऊंचाई बरूबर ऊंचो पूरा न कर दे हैं
0: जी,
1: तब तक वो की सुरक्षा वो की पोषण पानी प्रबंधन हर चीज को ध्यान रखें।
0: बिल्कुल परवरिश करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, तो ऐसो ही संकल्प लेने हैं तब अपनो वृक्षारोपण सफल हुई है
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत उपयोगी बात हमारे हर विलास भैया के माध्यम से तमाम श्रोताओं तक पहुंच गई। हर विलास भैया अपनी फरमाइश आप हम तक भेजियो कि पहले हम अटका आपसे पूछ लेवे
0: जी।
1: अटका भी आपके किसान यही से जुड़ो है
0: जी।
1: खेती के औजार में अक्षर आए 3, पहलो अक्षर काट देओ तो सिया राम खो दीन।
0: तो इसका हो गया फिर जी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरविलास भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अटका को सही जवाब देवे। हरविलास भैया कैसे लगा लो अंदाज?
0: हाँ काट तो सिया रह जाता, सिया सिया राम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हरविलास भैया, और अब आप अपनी फरमाइश हम तक पहुँचा दो।
0: सर जी काशीराम चौरसिया जी के सुर में सुना देना
1: लोग। आपकी पसंद पे सुन रहे हैं काशीराम चौरसिया को गाओ भजो, बहुत ही प्यारो सो लोकगीत। हर विलास भैया ऐसे ही जुड़े रहो आकाशवाणी सागर से, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: भैया, फोन करें लोगी सुने ये कार्यक्रम में स्वागत है आपको।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते भैया, अपना नाम बताओ।
1: राजेंद्र यादव बोल रहा, ग्राम सोरखी जिला छतरपुर से।
0: राजेंद्र भैया, क्या करत हो आप उधर छतरपुर में अपने गांव में?
1: गांव में सर खेती किसानी से जुड़े रहते हैं,
0: अच्छा
1: खेती
0: अच्छा
1: किसानी को काम है घर में।
0: अरे वाह, तो अबे खेतों में क्या चल रहा हो भैया आपके?
1: अब तो सर मूंग की कटाई हो गई है, औदा भी निकल गया, और 60 दिनों वाली लगाए थे किसम।
0: अच्छा, भैया जब खेती बाड़ी से फ्री हो जाते हो तो क्या शौक है आपके?
1: है तो सर खेल कूद में भी रुचि थोड़ी बहुत, क्रिकेट भी खेल लेते हैं
0: अरे वाह
1: और
0: भैया,
1: पढ़ाई भी
0: वाह।
1: चल रही है, डीएड फर्स्ट ईयर चल रही है सर
0: अच्छा,
1: जी।
0: बहुत ही अच्छी बात बताई भैया आपने कि खेल कूद में भी आप रुचि रखा।
1: जी
0: तो क्रिकेट में क्या खेला था भैया? अपन और तो सब खेल लेते हुए।
1: जी जी ऑलराउंडर हैं सर, बैटिंग भी पसंद है, बॉलिंग भी पसंद है।
0: अरे वाह भैया, थके थके से काय लग रहे हैं आप?
1: नहीं सर थके नहीं है, वो फोन ट्राई कर रहे थे तो बार बार लग नहीं रहा, तो इस वजह से थोड़ा
0: तनाव आ गया
1: लग
0: है।
1: रहा है आपको। जी
0: अच्छा, तो भैया हमारे एक अटका पूछा था, ज्यादा जानते ही हो आप,
1: जी
0: तो अटका हम पूछे ले रहे हैं आपसे।
1: जी सर
0: अटका कह रहे हो कि खेती के औजार में अक्षर आए तीन, पहलो अक्षर काट
1: जी
0: दियो तो सिया राम खो दीन।
1: ऐसे बोलिए सर।
0: खेती के औजार में अक्षर आए तीन, पहलो अक्षर काट दियो तो सिया राम खो दीन।
1: पहलो अक्षर काट दे तो सिया राम को देन। हंस गया सर, फरमाइश
0: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। तो अब आ गए हैं अपन के, हम आपसे फरमाइश पूछ लें।
1: है सर। आज ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में।
0: ठीक है भैया, हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे बाबूलाल मस्ताना को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: जय शेखर भैया, बहुत ही प्यारो सो अटका आज अपन अपने कार्यक्रम में लेके आए थे, जो ना केवल परंपरागत हतु बल्कि हमारे श्रोता भैया को थोड़ा सो उलझा भी गयो, मगर बहुत हद तक सुलझा भी गयो।
1: मजेदार हतो।
0: हाँ
1: भैया, जो अटका भेजो कौन ने हतो?
0: श्रोता भैया, जो बहुत ही प्यारो सो परंपरागत अटका हमें प्राप्त भवतु चार्ली राजा से, जिनने हमें क्वायला बंडा से जो अटका भेजो तु।
1: चार्ली भैया, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको, और ऐसे ही नोने नोने अटका आप सभी श्रोता हम तक जरूर पहुंचाता रहो भैया, हमें रहते आपके अटकों को इंतजार।
0: श्रोता भैया, अटका भेज भी के लाने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लियो, आकाशवाणी सागर को व्हाट्सएप नंबर है 97704 32297।
1: वाह भैया वाह।
0: और जयशेखर भैया, हमारे जो श्रोता भैया हैं पत्रों के माध्यम से अटका भेजो चाहते हैं उनको लगी हाथ पता और बता दो।
1: तो भैया आपको ऊपर लिख देने हैं अटका, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सागर, मध्य प्रदेश।
0: श्रोता भैया, अटका तो कार्यक्रम में भेजना ही है, संगे संगे ई कार्यक्रम से जुड़ने भी है। आप पूरे कार्यक्रम भर जा महसूस करत रहे हो कि ई कार्यक्रम में बहुत ही बहुत आनंद आत कहानो। तो जय शेखर भैया, हमारे तमाम श्रोता भैयाओं को लगी हाथ आकाशवाणी सागर को फोन नंबर और बताए दियो।
1: बिल्कुल भैया, सागर आकाशवाणी को अगर आपको फोन नंबर लगाने हैं तो आपको इंतजार करने पड़े मंगल को 4 बजे तक। 4 बजे से आप फोन लगा लो और हमारे कितने को एसटीडी कोड सबसे पहले लिख लो 075582। फोन नंबर है 240-845।
0: श्रोता भैया, हमें पूरा विश्वास है कि आगामी समय में ई कार्यक्रम से आप और भी जुड़ के बहुत ही बहुत आनंद की प्राप्ति जो है वो करत रहे हो। श्रोता भैया, एक निवेदन और चलत चलत हमारे जयशेखर भैया बार बार आपसे पूरे कार्यक्रम भर निवेदन करते थे कि ई कार्यक्रम में एक बार फोन लगबे के बाद, यानी ई कार्यक्रम में एक बार शामिल होवे के बाद 3 महीना तक आपको जो है फोन नहीं लगाना।
1: बिल्कुल भैया, और जब भी फोन लगाओ तो भैया ये बात को ध्यान रख लो कि नेटवर्क अच्छा मिल रहा है मोबाइल को और आजू बाजू से कोई शोर ना हो रहा हो भैया।
0: कैसे भैया, आप लोगों की आवाज गुणवत्तापूर्ण हम तक पहुंचे तो निश्चित रूप से आपको सुनबे में भी अच्छा लगे और कार्यक्रम भी बहुत अच्छो बन है, बहुत उम्दा बन है।
1: नीरज भैया, एक गड़बड़ और हो जाते हैं
0: जी,
1: कि जब भी हमारे श्रोता हमें फोन कराते हैं, कई श्रोता कई बार, तो कहूँ रिकॉर्डिंग को बटन दबा दें कि हमारी रिकॉर्डिंग हो जाए, तो फिर वो के बाद सुन ले, या स्पीकर दबा देते हैं कि अटका हमारे चारों तरफ वाले बता दें। तो भैया ना तो आपको स्पीकर चालू करने हैं और ना रिकॉर्डिंग चालू करनी।
0: बिल्कुल भैया, ये में भी कार्यक्रम की गुणवत्ता बहुत हद तक प्रभावित होते। हम उम्मीद है हमारे तमाम श्रोता भैया इन सब बातों को ध्यान

0: राखें। और अब श्रोता भैयाहरो, आज को फोन करें लोकगीत सुने हो रहो तई संपन्न। आज के ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हती जय शेखर की। आप तमाम श्रोता भैया बिन्नाहरों से बुंदेली में बतकाव कर रहे थे।
1: हम भैया जय शेखर
0: और हम नीरज सोनी
1: और अब दो भैया अनुमति
0: राम राम, राम।

0: अभी श्रोता फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम सुन रहे थे।
1: रमा 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए

0: प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला।
4: हाँ।
3: आह देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल चल।
4: हाँ,
3: हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: हाँ, ठीक है।
3: चल
1: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोच्चू और मंगला?
7: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था,
0: आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राज वर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हो तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
6: अभी आपने उमंग कार्यक्रम सुना, प्रतीक्षा है अगले प्रसारण की।

पंकज उधास की आवाज़ है, शब्दकार अंजुम रहबर, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जाँच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्य

0: कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
2: दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
1: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजु द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत हैं। बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली जमीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है। जाते हुए अनूठी सौगातें हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये। मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अटखेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर की, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य की पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज़ का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपैरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह। सागर की तरह गहरी आंखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार। और भी बहुत जगह जहां पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज किसकी है आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज़ में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है। अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड। वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता, इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और से सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज़ है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मेरी हद है कहाँ तक, जी हाँ, इस बात को हमें याद ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंज़र होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना, मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद

फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का आईना है, उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया, सदियों से बहता फिर भी ताजा लगता है, उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं, समंदर के शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आजादी का एहसास है, देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर फिर भी कितना बेबस है, यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीजों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं ये झुक गया आसमान, इस फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल है और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज जीव जंतु

संचार, परिवहन, देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगे समुद्र की, जिसे हम सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली। अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है, तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है, जावेद अख्तर की बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है। सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही है फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज, शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है, सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है, मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत, प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी, हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे। और हमारी बातें अधूरी रह गई, हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और इला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हमने लिया है मुकेश का गाया हुआ। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम संगम।

0: मुकेश की आवाज में गाए फूल बने अंगारे फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: हैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे हैं। इंदौर में कल से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर आकाशवाणी को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट के लिए उनका कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन 3 सीटों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। भाजपा पहले ही 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि 1 सीट के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। जून के शुरुआती दिनों में ही प्रदेश में औसत से 65% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक पूरे प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश केवल 8.3 मिलीमीटर मानी जाती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। वहीं आज प्रदेश के करीब आधे हिस्से में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जलगंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी पर स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी में कल 35वीं एनसीसी बटालियन के द्वारा आयोजित एनसीसी शिविर में कैडेटों ने रक्तदान किया। जबलपुर में बारिश से जलभराव की परेशानी से निपटने के लिए निगम आयुक्त ने आगामी 15 दिनों में नालों और नालियों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम के बनखेड़ी में साइकिल रैली का आयोजन कल किया गया। कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर 30 जून तक लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प जब

0: लाभ पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन

0: हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
5: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
3: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
7: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो आकाशवाणी का देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीत बत किया, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा। मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता।
1: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान है उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए इसका
1: बिल्कुल। और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें, हम
2: अब गीत सुना दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विविध भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बताई
0: दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: के दिन में।
1: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण, इसका भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
3: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
4: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा यह सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला

0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
1: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
1: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हा? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
2: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
1: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
2: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
1: फजूल की मचमच,
2: तुमसे मतलब?
1: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
2: तो मेरा घर कहीं और है।
1: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
2: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
1: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
2: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसे ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
1: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
2: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
1: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
2: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
1: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
2: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: सुमंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय पीड़ा, असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: ईंधन का साधन है, और व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये, इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को, एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले हैं,
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ।
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसे बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया,
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी, हाँ। कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहां हमें बोलना नहीं चाहिए कहां बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का

0: और अहंकार में सामने वाले को तबाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार इसने बढ़ता है। इन्होंने बात लेकर के
1: और हमारी सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
0: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तबाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तबाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तबाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
0: बिल्कुल,
1: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
0: देखिए एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की
1: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
0: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ, कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है। अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
1: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात,
1: तो ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
0: भरे बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम कल
1: ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो
1: खाते हैं।
0: ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो समझ गई।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
1: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना उससे लोइया बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1/6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/6 चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, कढ़ाही में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनिए।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बताएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूँ, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण की शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
1: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है।

0: डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स है और ब्लड रिपोर्ट, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला होगा डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ता है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: right, वो दूर हो जाता टेंशन
0: है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे एमडी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण है, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ।
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत

0: जल्दी पकड़ लेते हैं, अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो, डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
1: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस किया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
0: ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज़ हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज़ आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
1: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
0: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में है, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
0: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
0: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, पर अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोस बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमीन पर का ये बहुत ही उमदा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है

0: उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
0: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
1: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
0: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ, ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूं, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, 1 कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको, बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
1: जी।
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
0: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
1: जी।
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है, जहां पे इमेज बनती है, उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी

0: स्टैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पूटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं, या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है, लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: हमें जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी छः दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोन्ड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकेरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं पर इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा

0: दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम,
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस घंटे की खास खबरें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होगी। बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट और इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगी। और भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर ही सिमट गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की।

0: सदियों की गूंज समेटे जो हर दिल की बनी धड़कन है, क्षितिज पार से आती जो वो सुरीला सा एक बंधन है। गूंज उठा जब आकाशवाणी का वो पहला पावन स्वर, भारत के कोने कोने में जाग उठाता हर घर वर। 90 वर्षों का सफर सुहाना, सुरताल की अमीर कहानी। युग बदला तकनीक बदली पर अमर रही आकाशवाणी, युग बदला तकनीक बदली पर अमर रही आकाशवाणी। दोस्तों, आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सालों से लगातार आकाशवाणी को इतना स्नेह देने के लिए। ये आप सभी का साथ है जो आज हम यहाँ तक लेकर आया है। आगे भी ऐसे ही स्नेह देते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सानिया आचार्य। और आज मेरे साथ हैं सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल से आदित्य कुमार पटेल, जो कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं और आज हमारे साथ एक दिन के आरजे बने हैं। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आज कार्यक्रम में आकर?
1: बहुत बहुत धन्यवाद सान्या। नमस्ते श्रोताओं, मैं आदित्य कुमार पटेल आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आकाशवाणी भोपाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और आज मैं बहुत खुश हूं यह उपलब्धि हासिल करके। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में और चर्चा करेंगे कार पूलिंग, ट्रैफिक और प्रदूषण का स्मार्ट समाधान और मिशन लाइफ के बारे में।
0: जी हाँ दोस्तों, और आपको सुनवाएंगे 5 जून को सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश। अभी आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म काय पोचे से।

0: गाय पोछे से अभी आपने गीत सुना, दिव्य कुमार श्रुति पाठक की आवाजों में, संगीतकार अमित त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में और आज हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य कुमार पटेल।
1: दोस्तों, आज विश्व महासागर दिवस है यानी वर्ल्ड ओशियन डे, जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हमारे जीवन में महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
0: बिल्कुल आदित्य, हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है। इस साल की थीम है महासागरों को बचाने के लिए नए प्रयासों, वैज्ञानिक खोजों और सामूहिक जिम्मेदारी, यानी कि अवेकनिंग न्यू डेप्थ्स। और हम अगर महासागर के महत्व की बात करें तो पृथ्वी की लगभग 50% से अधिक ऑक्सीजन महासागरों द्वारा ही पैदा की जाती है।
1: ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए भोजन और आजीविका का मुख्य साधन है और महासागर पृथ्वी के तापमान नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर ही है, जहां लाखों प्रजातियां रहती हैं।
0: बिल्कुल, और आज महासागर खतरे में है। प्रदूषण के कारण कहीं न कहीं हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण, ओवर फिशिंग और क्लाइमेट चेंज से हमारे समंदर खतरे में है। हम सभी को ये समझना होगा कि अगर महासागर सुरक्षित नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम सभी को ये बात समझनी होगी।
1: जी हाँ, और हमारे निरंतर प्रयासों से हम इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं, इसलिए मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। और हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए इसका ध्यान रखना होगा।
0: बिल्कुल आदित्य, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ब्रह्मास्त्र से गीत अभी आपने सुना रिजी सिंह की आवाज में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कार पूलिंग की। हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कार पूलिंग करना, ये बातों पर जोर दिया जा रहा है। रोज रोज अगर चार व्यक्ति एक ही एरिया से ऑफिस जाते हैं तो वो कार पूलिंग कर सकते हैं। ऐसे में वो पैसे भी बचा सकते हैं और प्रदूषण ना होने में भी योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सान्या, इससे ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी और स्ट्रेस फ्री राइड भी रहेगी। और अब तो आप ऐप के द्वारा भी कार पूलिंग कर सकते हैं। कार पूलिंग का सीधा और सरल अर्थ है एक ही दिशा या एक ही ऑफिस कॉलेज जाने की ओर जाने वाले दो या दो से अधिक लोगों द्वारा एक ही कार का इस्तेमाल करना।
0: जी, कार पूलिंग एक विकल्प नहीं बल्कि एक स्मार्ट चॉइस है। बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में कार पूलिंग का उपयोग कर रहे हैं। यदि हम सब मिलकर स्मार्ट समाधान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हमें आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, शांत और प्रदूषण मुक्त भविष्य सौंप सकेंगे। तो हम यही कहेंगे, सफर साझा कीजिए और पर्यावरण बचाइए।
1: सान्या, हम आशा करते हैं कि कार पूलिंग के महत्व को हम सभी समझेंगे और इसे अपनाएंगे।
0: बिल्कुल आदित्य। दोस्तों अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश का। तो आइए सुनते हैं तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश।
2: सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नमन शर्मा है और मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल का छात्र हूँ और मैं अपना आखिरी वर्ष में हूँ मेरे डिप्लोमा में। और आज मैं भारतीय त्यौहार और संस्कृति मूल्यों के प्रचार में आकाशवाणी पे बोलना चाहूँगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक अनेक त्यौहार, अनेक अनेक संस्कृति मनाई जाती हैं। खासकर ऐसा देश जिसमें अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे त्यौहारों की संख्या, संस्कृति संख्या का लेखन करना असंभव है। और जैसे कि हमारे ज़्यादातर देश में ग्रामीण लोग ज्यादा रहते हैं, वहां तक अलग अलग संस्कृति पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए। आकाशवाणी हमारे ग्रामीण देशों में अलग अलग जगह पे अनेक अनेक संस्कृतियों के संदर्भ में बोलने के लिए, लोगों को उनके बारे में बताने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे कि हमारे देश में ईद, दिवाली, पोंगल, क्रिसमस जैसे और भी अनेक त्यौहार है जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता, पर वो हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्से में मनाए जाते हैं। उनके बारे में हमको बताने के लिए आकाशवाणी एक अच्छा माध्यम है। और अंततः एक देश जिसमें इतनी सारी संस्कृति हैं, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे सिर्फ लोग सुन के ही चीजों के बारे में जान सकते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्यौहार के माध्यम में अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे अलग क्षेत्र है उनमें ये सारी चीजें पहुँचाने बहुत अच्छा माध्यम है। धन्यवाद।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ आदित्य कुमार पटेल एंड मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एससी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। और मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संस्कृति के संरक्षण में आकाशवाणी की भूमिका। जिस तरह किसी राष्ट्र की संस्कृति जो होती है वो उसकी आत्मा होती है, उसी तरह एक आकाशवाणी जो है जो हमारे राष्ट्र की उस आत्मा की मधुर आवाज़ है। आकाशवाणी एक वो चैनल है जो हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की सेवा प्रदान करती है। आकाशवाणी एक रेडियो नहीं, वो माध्यम है जो जन जन तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाता है। और जो आकाशवाणी है वो भारतीय संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम करता है। जिस तरह एक पेड़ अपनी जड़ से जुड़ा रहता है, उस तरह आकाशवाणी अपनी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आकाशवाणी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में 8 AM पे समाचार है, फिर उसके बाद इवनिंग में कुछ लोकप्रियता होती हैं और आफ्टरनून में कुछ संस्कृति गतिविधियों के बारे में बताते हैं। इससे ये रहता है कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है उनको ये पता चलता है कि हमारे राष्ट्र में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन से कल्चर से कौन सा स्टेट बिलोंग करता है। उससे ये रहता है कि हमारी जो अभी नई पीढ़ी है उनको पता चलता है कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी ज़रूरी है और कितनी सक्षम है। थैंक यू।
4: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा गांधी है और मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है लोक संस्कृति और आकाशवाणी। भारत की असली झलक महानगरों की चकाचौंध में नहीं दिखती है, इनको हम हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं। और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनकी जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ी हैं, तो आप सबको ये पता होगा कि जो लोक संस्कृति है, जैसे लोक नृत्य हुआ, लोक संगीत हुआ, और देखा जाए तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने ये बखूबी देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो संस्कृति हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो बखूबी उनको निभाते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारी जो लोक संस्कृति है उन्हें आगे, हमारी आगे वाली जनरेशन है उस तक पहुँचाएँ। और आकाशवाणी ये काम बखूबी कर रहे हैं। मैं इस जनरेशन की होके भी, आप मानेंगे नहीं कि मुझे भी मतलब आकाशवाणी बहुत पसंद है। जब मेरी मम्मी, मेरी नानी जैसे कि सदाबहार आते हैं, अभी भी आते हैं, तो उनके लिए मतलब वेट करते थे कि आज ये आना है, तो सब काम छोड़कर वो वेट करते थे। आकाशवाणी की बात करें तो मन में एक गहरे जुड़ाव का एहसास होता है दशकों से, विशेष ग्रामीण भारत में। आकाशवाणी मनोरंजन, समाचार, और कहा जाए तो आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो सेवा नहीं है, ये हमारे देश की आवाज़ है और एक सशक्त संचार है। धन्यवाद।
5: नमस्ते सर, टीचर, मेरा नाम मयंक है फ्रॉम आईटी ब्रांच। मुझे टॉपिक मिला है युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने में आकाशवाणी की क्या भूमिका है। आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो ऐसे नॉर्मली पे प्लेटफॉर्म्स पे म्यूज़िक सुनते हैं। आकाशवाणी हमें म्यूज़िक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे कहने को देख लिया जाए तो हमें काफ़ी सारी संस्कृतियों के बारे में जानकारी देता है, और आकाशवाणी से हमें ये सुनने को मिलता है जैसे कौन से कल्चर क्या क्या होता है, ये सब जानने को मिलता है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हर स्टेट में अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो कौन से स्टेट में कौन सा त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, ये सब हमें आकाशवाणी पर सुनने के लिए मिलता है। थैंक यू सर।
0: दोस्तों, अभी आपने सुना आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश को। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसके प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। ये मिशन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर जीवन शैली में बदलाव लाने का एक जन आंदोलन है।
1: यह मिशन हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनका संरक्षण कर सकें।
0: बिल्कुल, यदि आज हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकटग्रस्त पृथ्वी छोड़कर जाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम सभी ने सुना है। इसी की तर्ज पर हमारे द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रो प्लैनेट पीपल बने और इस धरती को हरा भरा और सुरक्षित बनाएं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। NALCO यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप NALCO की ऑफिशियल

साइट यानी कि NALCOINDIA.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून है। अधिक जानकारी के लिए आप NALCOINDIA.com पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनवाते हैं अगला गीत यमला पगला दीवाना से सोनू निगम की आवाज में।

दोस्तों भी आपने गीत सुना सोनू निगम की आवाज में, और जैसे कि आज आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं ये गीत गुड न्यूज से दिलजीत दोसांझ, ध्वनि भानिशाली और सुखबीर की आवाजों में।

0: श्रोताओं, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और एक बार आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई।
1: हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको और हमारा साथ यूं ही बना रहे। आपके रेडियो दोस्त आदित्य कुमार पटेल
0: और मैं आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य लेते हैं आपसे इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं। पेश कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं हरी हरन की आवाज। संगीत है जॉली मुखर्जी का, एल्बम है काश।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अंतराल के बाद आइए कार्यक्रम संगीत सरिता में आपको सुनवाते हैं सरदार अंजुम का लिखा कलाम। संगीत है जगजीत सिंह का, आवाज है तलत अजीज की।

0: संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
4: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
3: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
5: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
4: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
6: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
4: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
3: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
5: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
4: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
6: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है संगीत सरिता और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सबा अफगानी का लिखा कलाम। स्वर और संगीत अनूप जलूटा का है, एल्बम है खजाना 86।

अभी आप सुन रहे थे सबा अफगानी का लिखा कलाम। स्वर और संगीत था अनूप चलूटा का। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

90. FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। छह बज चुके हैं, पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गोविंद मुनीश के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें किशोर कुमार और आशा जी की। फिल्म का नाम आंसू बन गए फूल।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में, और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनैना फिल्म का गीत यशुदास की आवाज में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: सुनैना फिल्म का गीत आपने सुना, यशुदास की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 6:15 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में स्वागत सभी सुनने वालों का, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अरुण राज के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है रहमान राजन का, आवाज़ है सुचित्रा की, एल्बम है दम तेरा।
1: Thank you.

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है संगीत सरिता कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, आवाज़ है शुभा मुद्गल की, एल्बम है अब के सावन।

यह आकाशवाणी सागर है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं साहिर के लिखे इस गीत के साथ, संगीत रवि का, आवाज है महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम हमराज़।

0: 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

संदेश के बाद सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं जीने की राह फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जीने की राह। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सदाबहार गीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत इस कार्यक्रम की इस चेतावनी गीत के साथ, कलाकार हैं अमर सिंह यादव।

0: अभी आप सुन रहे थे ये चेतावनी गीत, कलाकार थे अमर सिंह यादव। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
3: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
5: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं।

Akashwani at 90. संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है लोक रंग कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये हास्य गीत। कलाकार हैं हरि नारायण अवस्थी।

हास्य गीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे हरि नारायण अवस्थी। इस हास्य गीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 7 बजने को हैं, थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में

उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि शाम 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:30 से। रात्रि 8 सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण। विषय होगा किसान सशक्तिकरण। ये कार्यक्रम हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:35 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8:45 से। मनचाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9 से। रात 9:30 से सुनिएगा सुनहरी यादें आकाशवाणी के 90 बरस। इस बार के मेहमान हैं डॉक्टर संजय सिंह वर्मा, आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी। आपसे बातचीत करेंगे जय शेखर और दीपक निषाद। रात्रि 10 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिलीज किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 से। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 से। ये दोनों ही समाचार हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की इस सभा का समापन होगा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय होगा आंखों को स्वस्थ रखने के उपाय। मेहमान होंगे डॉक्टर अभिषेक जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, और भेंट करता होंगे जय शिखर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:45 से।

0: जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से, इसे हम रिलीज करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागनी सुनिएगा सुबह 10:05 से। अपनी ही पसंद के गीत सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में सुबह 10:30 से। सुबह 11 बजे से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिली करेंगे दोपहर 2 बजे से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5 बजे से, इसे हम रिली करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही हम रिली करेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। वक्त होगा शाम 5:02 का। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से। चित्रपट संगीत शाम 6 बजे से होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा एक बार फिर से शाम 6:15 से। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। शाम 7:20 से सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा,
5: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
6: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
5: कहाँ
7: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए वीरता पुरस्कार। इंदौर में कल से शुरू होगा ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और कृषि मंत्रियों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कल से देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए, जिसके तहत लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकें इंदौर में कल से शुरू होंगी, जो 13 जून तक चलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि खाद्य हानि और अपव्यय आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के प्रयासों समेत कई अन्य विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
1: खाद्य हानि और अपव्यय, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 अरब टन तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। उस पर एक चिंता का विषय है, इस पर चर्चा होगी, इसको कैसे रोकें। छोटे किसान अगर फायदे की खेती करे, अनाज के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा। और फूड स्टोरेज, खाद्य भंडारण की व्यवस्था कैसे सुधारें ताकि सुरक्षित रहे फूड। इसमें जो देश अलग अलग

0: प्रयास कर रहे हैं वो आपस में अपने अनुभव भी साझा करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे।
1: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
3: प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट और इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के दो उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल शनिवार को पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अर्पणा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक HPV टीकाकरण किया जा चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 1,00,000 से अधिक संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से उनके पारिश्रमिक में 4.46% की वृद्धि लागू होगी। नीमच में 11 जून को ITI पंजीयन मेला एवं करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सतना कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अमर शहीद बिरसा मुंडा बलिदान दिवस स्मरणोत्सव के तहत कल शहीद भवन भोपाल में निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। नर्मदापुरम जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम बिछुआ में नल जल योजना का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया गया। शिवपुरी जिले की समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 17 अगस्त 2026 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और बैतूल के सारणी और घोड़ा डोंगरी के पूर्व सैनिकों की बैठक कल सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गणपति वंदना। कलाकार हैं नंदराम पटेल और उनके साथी।

0: नंदराम पटेल और उनके साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गणपति वंदना।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
4: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
3: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
5: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
4: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
6: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी @ 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: लोकरंग कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 होने को हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
8: सात विकेट लेवे गला ने प्लेयर ऑफ द मैच चुनो हो। उरई के संग बुंदेली समाचार समाप्त भए।
9: बुंदेली समाचार।
8: तो भैया बहनों, आज है 8 जून को दिन, और आज को दिन जो है जो एक खास तरीका से मनाया जाता है, आज को दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब अपने आप और उन्होंने अपने स्कूलों में पढ़े हुए मौलिमोड़ा भी पढ़ा लिखा थे कि पूरी पृथ्वी पे कुल 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। जो एक अलग बात है कि अपने आसपास में कहीं पर भी समुद्र नहीं है, तो चाको मतलब जो नहीं कि समुद्रों को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं है। अब जैसे जो बस्कारो लगे बार जो मानसून की जो पूरी की पूरी बारिश होती है, जब पूरी की पूरी बारिश को जो पानी है, जो पानी ये समुद्रों से ही आते हैं, जिस समुद्रों से ही बादल बनाते हैं, और वे बादल फिर अपने ऊपर आके अपने स्वच्छ और ताज़ा पानी की व्यवस्था कराते हैं। तो जी समुद्रों को बहुत महत्व है अपन औरों के जीवन में, और समुद्र अच्छे रहें, समुद्र ठीक ठाक रहें, समुद्र साफ सुथरे रहें और समुद्र प्रदूषण से मुक्त रहें, तो अपन औरों को जीवन भी अच्छी तरीके से चले। यही जानकारी के लाने जो 8 जून के दिन है अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस के रूप में मनाया जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जाकर शुरुआत करी थी 1992 से। तो जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है थी। और देखो यार, आज अपन उन्होंने अपनी पसंद के लोकगीत सुना ही रहे हैं, तो जो एक चिट्ठी हमारे हाथ आ गई है हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोहरवास तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से, विनोद कुशवाहा, नारायण सिंह, मनकोबाई, निशा कुशवाहा, प्रियंका बंटी, कपिल और ब्रजभान कुशवाहा, और करण कुशवाहा और छोटू कुशवाहा की, इन सबकी पसंद पे अपन सुनते हैं मंजू श्रीवास्तव को गाओ भो जो लोकगीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: तो भैया बहनों, देखो सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास होते हैं जिससे अपनी खेती अच्छी हो सके, अपन औरों खेती में अच्छा लाभ मिल सके। और ऐसा ही एक राष्ट्रव्यापी पहल सरकार के द्वारा शुरू करी गई है, जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। जब उद्देश्य मिट्टी की सेहत सुधार हो, कृषि भूमि बंजर होवे से बचाओ और किसानों को टिकाऊ और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के लाने जागरूक करवो। जो अभियान के रूप में चलाया जा रहा है 1 जून से 30 जून तक, मतलब अभी जो अभियान चल रहा है, और मगर कहने को मतलब जो है जो अभियान तो चला ही रहा, मगर जो अभियान की जो भी बातें हैं उन सब बातों में जब बात को ध्यान रखने है कि जा ऐसा नहीं कि 30 जून को जो अभियान खत्म होगा तो अपने जो काम भी खत्म हो गए, ऐसी बात नहीं है। जाके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करत रहे वो बहुत जरूरी है। और उद्देश्यों में जो है कि मिट्टी

सेहत सुधारवो, मृदा परीक्षण करावो, प्राकृतिक और जैविक तरीका से खेती करवो और जागरूकता के शिविर आयोजित करवो। और एक ही संग संग सबसे जरूरी चीज जो है वह है जल संरक्षण की, कैसे खेतों में पानी को सही उपयोग और फसल प्रबंधन की व्यवहारिक उपाय यदि अपन और होने मालूम हुए तो अपन खेती बचाव के अभियान में कोई खास कोई जरूरी कोई अच्छी तरीके की अपन सहयोग न कर पाए। तो जल अभियान से जुड़े लाने और अपने खेत की मिट्टी को परीक्षण करवा लाने अपन को अपने निकटतम विज्ञान केंद्र जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहलाते हैं जो केवी के या मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विभाग की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है तो उनसे अपन संपर्क कर सकते हैं और उतने पे अपन अपनी मिट्टी को परीक्षण करवा सकते हैं और फसल उत्पादन के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भूमि को उनके लाने भूमि को सुरक्षित रखो जय अभियान को मूल उद्देश्य है। जब आपको अपन ध्यान दें और जब अपने जरूरी जो भी काम है वो करें। जो चिट्ठी हमारे हाथ में आ गई कटघोरा से भाई चंद्रपाल से, श्रीमती शकुंतला, मनोज पाल से, लखन पाल से, दिनेश कुमारी कविता और बेमित्रा नयापारा से भाई ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना, नीलेश, श्रद्धा, गौरा और निधि साहू, इन सबकी पसंद पे अपन सुनते हैं शिवरतन यादव को गाओ जो लोक भजन।

भैया बहन रहो, अपन और खेती किसानी कराते हैं पारंपरिक तरीका से तो करते ही हैं अपन लोगों ने, और आधुनिक तरीकों से भी कराते हैं। और आजकल आप और जानते ही हो कि जैविक तरीके से खेती करने को बहुत प्रचलन चल रहा है। कहा कि जैविक तरीका से खेती करने से फसल की गुणवत्ता अच्छी हुई थे, फसल की क्वालिटी अच्छी मिला थे और साथ साथ में लाभ भी अच्छा मिला था, और जैविक तरीका से खेती कर वो सस्ता भी पड़ा थे। तो जैविक खेती में बहुत जरूरी चीज होते हैं जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक का होते हैं जीवित जो सूक्ष्मजीवी होते हैं जैसे जीवाणु, कवक और शैवाल, इनसे तैयार करे जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं वे मिट्टी की प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं और मिट्टी की उर्वरता शक्ति में सुधार कराते हैं, और रासायनिक उर्वरकों पर इनसे का होता है कि अपनी निर्भरता कम हो जाते हैं। अब जब ये बात है कि जैव उर्वरक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग कामों के लाने अलग अलग प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिर करवे वाले जहाँ राइजोबियम और एजेटोवेक्टर होते हैं, और दूसरे प्रकार के जैविक उर्वरक होते हैं फास्फोरस से घुलनशील बनाए वाले। तो जे मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को घोल के पौधों को आसानी से उपलब्ध करा दिए थे। और कछु जैव उर्वरक यानी सूक्ष्मजीवी वाले जो उर्वरक हैं वे ऐसे होते हैं जो पौधों के विकास में सहायक होते हैं। तो वे पौधों के लाने हार्मोन जैसे उनके पदार्थ होते हैं वे उत्पन्न कराते हैं जैसे जड़ों को विकास और उपज से बढ़ाते हैं। तो अपनों ने अपनी खेती के संगे संगे जा तरीका की जो खेती है जैव तरीके की उर्वरक की खेती है जाको उसी उपयोग करें। जाके बारे में कुछ और बातें करें, मनोवे जाए चिट्ठी आ गई है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, यमुना प्रेम साहू, मिथिलेश, सूरज और ज्योति ठाकुर की। और एक चिट्ठी है दतरंगी से भागवत वर्मा, भाटापारा से हरविंदर सिंह चावला और रिंगनी से दिनेश वर्मा की। तो इन सब भैया बहनों की पसंद पे अपन सुनाते हैं नवनीता श्रीवास्तव को गाओ जो चौकड़िया गीत।

तो भैया बहनों, अपन और देखो बात कर रहे थे जैव उर्वरकों की। तो जैव उर्वरकों को उपयोग करने से लाभ का का होते हैं अपन के मन में जब आज जरूर आ रही हुए। तो यहाँ सबसे बड़ा लाभ तो जो होता है कि ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में सस्ते होते हैं और पर्यावरण के लाने बहुत अनुकूल होते हैं। इनमें मिट्टी की जल धारण क्षमता और उनकी जैविक दशा में ये सुधार सी कराते हैं और फसल की उपज में 10% से 25% तक की वृद्धि हो रहा थे और भूमि को प्रदूषित करे बिना कृषि उत्पादन को स्थिर और दीर्घकालिक बनाते हैं। जिनको उपयोग करवे के लाना तीन खास तरीका होते हैं। पहला तरीका है बीज को उपचार। अपन बीज बुआई करवे पहले ही यदि वह जैविक उर्वरकों से उपचारित करके बो दें तो वासे काफ़ी सारा फायदा हो सका थे। दूसरा तरीका है इनको उपयोग करवे को जड़ उपचार, मतलब धान जैसी फसलें जो होते हैं उनमें रुपाई करवे के पहले जड़ों को जैव उर्वरक के घोल में डुबा दिया जाता है और फिर बाकी बाद में उनकी रुपाई करी जाते हैं। अभी अपन खरीफ में अभी धान की बुआई जैसे कई लोग करवे बारे होंगे तो वे और जाओ उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो होते हैं मृदा उपचार, जहाँ मैं कहा होता है कि जैविक खाद या रेत में मिला के चाहे बुआई के पहले खेत में डाल दो जाते। तो अपने खेत की सही जरूरत जैसी जरूरत है और जैसी अपने आवश्यकता है वह हिसाब से जैव उर्वरक और उनकी मात्रा जानने के लाने अपने अपने आसपास के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे अपन सलाह ले लें और बस सलाह लेने के बाद में बस सलाह के हिसाब से अपन जो जैव उर्वरक की जरूरत है वह अपन लोग उपयोग करें और अपने लाने अच्छा लाभ कमाएँ। तो जय एक चिट्ठी अपने सामने पास में आ गई है। जय चिट्ठी लिखी है नरसिंहपुर से भोले शंकर साहू, करकबेल से कमलेश कहार और गंज बासौदा जिला विदिशा से भागचंद साहू ने। एक और चिट्ठी है ग्राम मोरटक का माफी ओंकारेश्वर जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल की। और एक चिट्ठी है सरस्वती शारदा रेडियो श्रोता संघ चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामर अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश, सोमेश, मनीषा और शुभम की। इन सबकी पसंद पे अपन सुनाते हैं रुद्रदत्त दुबे को गाव हो जो लोकगीत।

तो भैया विनर, देखो जिन बातों के बारे में अपनों ने आज चर्चा करी, इन सब बातों को अपनों ने ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें खास तौर पे, और ये सब चीज़ों के संग संग अपन अपने काम करें। कहा से देखो, अब खरीफ को मौसम आएगा है, बिल्कुल मूड पे ही आगा है बिल्कुल, तो अपनों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाए, अपने काम करने हैं। और जो आधुनिक तरीका है, आधुनिक तौर तरीका है, आधुनिक सुविधाएँ जो सरकार की तरफ से अपन मिल रही हैं, इन सबको लाभ ले दो, यदि अपन काम कर हैं तो अपन अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब जब देखो चला चला, हमारे हाथ में चिट्ठी आ गई अपनी, जो लिखी अपनी नीम स्त्रोता है, मेन चौराहा कवाई 12 राजस्थान से सती श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हेमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव की। और एक चिट्ठी जा और है, जा लिखी है सह्याद्री परिसर भदभदा से योगेश्वर सिंह भारती और उनके परिवार के लोगों ने, तो इन सब ने सुनवो चाहो है गोसाई घनश्याम दास मृदुल को गाव हो जो लोक भजन।

और भैया मैं हूँ, देखो चलने की हो रही बढ़िया, तो आप उनसे लेते हैं विदा। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो हाथ जोड़ के राम राम।

0: जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन में?
1: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन। पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
0: जी,
1: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और अब मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
0: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
1: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो
0: जी।
1: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
0: जी,
1: कोई भी स्कीम हो।
0: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163%, यानी 163%, 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
0: जी।
2: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
0: जी।
2: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
0: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरू बात होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
3: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं और गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको, और जैसे

0: आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.4 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका। तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
0: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: तो पैक्स जो आप कह रहे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
2: क्रेडिट सोसाइटी जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया, यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है, जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे

0: पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ईनाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फास्ट फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी जरूरत क्या है?
0: ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर्स इंटरसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000, उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं, और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
2: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range, right. And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent, so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
3: Thank you.
0: Thank you very much.
2: Thank you very much.
3: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Vinod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms,

0: Government of India. K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार.
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण. यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर. आइए सुनते हैं वार्ता. विषय है आकाशवाणी विकास के 90 वर्ष. वार्ताकार हैं श्याम सिंह शोधार्थी यूटीटी सागर.
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज का युग सोशल मीडिया, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है. आज की युवा पीढ़ी शायद यह कल्पना भी नहीं कर सकती कि एक समय ऐसा था जब पूरे देश की धड़कन रेडियो से चलती थी. रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं था बल्कि लोगों, भावनाओं, संस्कृति, ज्ञान और जनसेवा का सबसे विश्वसनीय साथी था. जब देश के अधिकांश गाँवों तक सड़क, बिजली और जनसंचार की सुविधाएं भी पूरी तरह नहीं पहुंची थी, तब आकाशवाणी लोगों तक समाचार, शिक्षा, कृषि संबंधी जानकारी और मनोरंजन पहुंचा रही थी. श्रोताओं, आकाशवाणी की यह 90 वर्षों की यात्रा संघर्ष, समर्पण और जनसेवा की अद्भुत कहानी है. बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी में दो शब्द है, आकाश और वाणी. आचार्य अन्न भट्ट अपनी ग्रंथ तर्क संग्रह में लिखते हैं कि आकाश का विशेष गुण शब्द को ग्रहण करना है. जिस शब्द या वाणी का हम उच्चारण करते हैं वह आकाश में अनगिनत समय तक विचरण करता रहता है और इसे प्राचीन काल में देववाणी, नववाणी, आकाश भाष्य, हरि शब्द आदि के रूप में अलग अलग ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है. प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा जो दिव्य ज्ञान वेदों के रूप में संसार को दिया गया, समय, काल और भाषा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस अमूल्य ज्ञान को समझने के लिए जिस शैली का उद्भव हुआ वही पौराणिक साहित्य कहलाई. पुराणों के द्वारा भारतीय संस्कृति, शास्त्र, भूगोल, विज्ञान आदि को समझने में सहायता मिलती है. विभिन्न ग्रंथ पुराणों में आकाशवाणी शब्द का उल्लेख मिलता है. जैसे विष्णु पुराण के पंचम अंक के प्रथम अध्याय में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में, श्री रामचरित मानस, स्कंद पुराण आदि में. श्रोताओं, क्या आप जानते हैं रेडियो का उद्भव भी विकास की यात्रा काफी रोचक रही है. यदि हम रेडियो के इतिहास पर दृष्टि डालें तो इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुई. इटली के वैज्ञानिक गुगली मार्कोनी ने वर्ष 1895 में बेतार संचार का सफल प्रयोग किया. यह मानव इतिहास की एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी. इसके बाद रेडियो तकनीक का निरंतर विकास हुआ और दुनिया भर में प्रसारण सेवाएं शुरू होने लगी. भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई. नवंबर 1923 में कोलकाता, मई 1924 में मद्रास और जून 1924 में मुंबई के रेडियो क्लबों से प्रसारण प्रारंभ हुई. भारत में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई और 23 जुलाई 1927 को नियमित रेडियो प्रसारण का शुभारंभ हुआ. हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह कंपनी अधिक समय तक नहीं चल सकी, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए सरकार ने प्रसारण सेवा का संचालन अपने हाथों में ले लिया. धीरे धीरे यह सेवा विकसित होती गई और वर्ष 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा. स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी रेडियो का महत्व बढ़ता गया और फिर आया 15 अगस्त 1947 का वह ऐतिहासिक क्षण जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी रेडियो के माध्यम से पूरे देश ने सुना. उस रात रेडियो केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं था बल्कि नव भारत की आवाज़ बन गया था. वर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात प्रोग्राम श्रोताओं के द्वारा खूब सुना जाता है और इसके 3 अक्टूबर 2014 से अब तक 134 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं. स्वतंत्रता के समय भारत में केवल कुछ ही रेडियो स्टेशन थे. विभाजन के कारण लाहौर, पेशावर और ढाका जैसे केंद्र पाकिस्तान में चले गए. इसके बावजूद आकाशवाणी ने अपनी सेवाओं का विस्तार जारी रखा और देश के कोने कोने तक पहुँचने का प्रयास किया. स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही. किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए विशेष प्रसारण, युवाओं के लिए युववाणी और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी कार्यक्रम तैयार किए. श्रोताओं, आकाशवाणी केवल सूचना का माध्यम नहीं रही बल्कि भारतीय संस्कृति की संरक्षक भी रही है. श्रोताओं, आकाशवाणी केवल सूचना का माध्यम

ही रही बल्कि भारतीय संस्कृति की संरक्षक भी रही है। भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने में आकाशवाणी का योगदान अविस्मरणीय है। देश के विभिन्न भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए गए। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, शास्त्रीय संगीत और क्षेत्रीय परंपराओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया। भारतीय संगीत के क्षेत्र में आकाशवाणी की भूमिका ऐतिहासिक रही है। पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, लता मंगेशकर और अनेक महान कलाकारों की प्रस्तुतियां आकाशवाणी के माध्यम से घर घर तक पहुंची। अनेक लोक कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान भी आकाशवाणी के मंच से ही मिली। आकाशवाणी का मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हितों और सुखों के लिए कार्य करना। इसी भावना के अनुरूप आकाशवाणी सदैव जनहित, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य करती रही है। समाचार प्रसारण की बात करें तो आकाशवाणी की विश्वसनीयता आज भी कायम है। एक समय ऐसा था जब लोग सुबह और रात के समाचार बुलेटिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। यह वाक्य आज भी भारतीय जनमानस की स्मृतियों में जीवित है। आपदा और संकट के समय आकाशवाणी ने हमेशा जनता का मार्गदर्शन किया है। चाहे युद्ध का समय हो, प्राकृतिक आपदा हो या महामारी, आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है। श्रोताओं, आपको बता दें, जैसे वर्तमान में गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना होता है, ऐसे पहले रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। भारत में रेडियो लाइसेंस की शुरुआत 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। रेडियो और टीवी जैसे संचार माध्यम पर सरकारी नियंत्रण रखने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफी एक्ट, डाक और तार विभाग के तहत यह लाइसेंस प्रथा शुरू की गई थी। अब जानते हैं कि कैसे रेडियो लाइसेंस बनता था। रेडियो का लाइसेंस निकटवर्ती स्थानीय पोस्ट ऑफिस डाकघर से बनवाया जाता था। शुरुआती दौर में इसका वार्षिक शुल्क लगभग 10 रुपये से 15 रुपये के बीच होता था और इसके लिए एक छोटी सी बुकलेट या विशेष स्टाम्प दिया जाता था, जिसका हर साल नवीनीकरण रिन्यूअल करवाना अनिवार्य था। आज़ादी के बाद भी यह प्रथा चलती रही। सरकार द्वारा पूरी तरह से 1991 में समाप्त कर दिया गया। तब से रेडियो सुनना पूरी तरह से निःशुल्क हो गया है। 1960 के दशक में आकाशवाणी का तेजी से विस्तार हुआ। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए केंद्र स्थापित किए गए। 1967 में व्यावसायिक विज्ञापन प्रसारण शुरू हुआ और 1969 में युवावाणी के लिए लोकप्रिय कार्यक्रम युवावाणी की शुरुआत की गई। 1888 में आकाशवाणी का नेशनल चैनल शुरू हुआ, जिसने देश के विशाल भूभाग को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। बाद में FM प्रसारण की शुरुआत हुई और रेडियो ने नए श्रोताओं तक अपनी पहुंच बनाई। श्रोताओं, आकाशवाणी ने अपने ऐतिहासिक 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि जिस केंद्र से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, उसकी स्थापना सागर में कैसे हुई थी। आकाशवाणी केंद्र की स्थिति तथा उद्देश्य, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 110 नए FM आकाशवाणी केंद्र खोलने की योजना बनाई गई थी, जिनका कार्य क्षेत्र 80 से 90 किलोमीटर तक हो सकता है तथा जो स्थानीय रेडियो स्टेशन कहलाते हैं। इसी में सागर के लिए एक LRS यानी कि लोकल रेडियो स्टेशन प्रस्तावित किया गया। सागर शहर बिना कटनी जंक्शन मार्ग पर स्थित है। सागर जिले की ऊंचाई समुद्र तल से 1500 से 1750 फीट है तथा क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का आकाशवाणी केंद्र एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से सागर नगर का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। इस केंद्र के निर्माण में लगभग 4 वर्षों का समय लगा। इस केंद्र का कार्य क्षेत्र संपूर्ण सागर जिला है तथा 80 किलोमीटर की परिधि में इसको प्रसारण सुना जा सकता है। इस केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.6 MHz पर सुने जा सकते हैं। स्थानीय केंद्र की स्थापना का उद्देश्य जिले की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करने के साथ साथ सागर जिले की विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना भी है तथा सागर जिले के विकास से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याओं को सामने लाने का प्रयास भी केंद्र द्वारा किया जाएगा। हालांकि स्थानीय केंद्रों का उद्देश्य सीमित होता है, लेकिन सागर विशेष से जुड़ी संस्कृति को प्रोत्साहित करने में यह केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज भी यह केंद्र क्षेत्रीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान कर रहा है। वर्तमान समय में तकनीकी तेजी से बदल रही है। टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में भी आकाशवाणी ने स्वयं को समयानुकूल बनाया है। आज इसे FM, मोबाइल ऐप, वेव्स, OTT, न्यूज़ ऑन AIR, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन माध्यमों से भी सुना जा सकता है। आज भी आकाशवाणी देश की लगभग पूरी आबादी तक पहुंच रखने वाले विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क

0: नेटवर्कों में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी विश्वसनीयता, सरलता और जनसेवा की भावना है। आकाशवाणी के 90 वर्ष हमें यह सिखाते हैं कि तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन समाज को जोड़ने, जागरूक करने और संस्कृति को संरक्षित करने का उद्देश्य कभी नहीं बदलता। नई पीढ़ी को इस अमूल्य विरासत को समझना होगा, क्योंकि रेडियो केवल अतीत को स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का भी एक सशक्त और विश्वसनीय माध्यम है। अंत में हम सभी आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को नमन करते हैं और कामना करते हैं कि यह संस्था आने वाले वर्षों में भी जनसेवा, संस्कृति संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के अपने दायित्वों का निर्वहन इसी समर्पण और निष्ठा के साथ करती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था आकाशवाणी विकास के 90 वर्ष। वार्ताकार थे श्याम सिंह, शोधार थी UTD सागर। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
3: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
4: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
5: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1 करोड़ 43 लाख फैमिली बेनिफिटेड हो

0: का जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल

और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है।

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को

0: वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मन चाहे गीतों के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खुद गर्ज फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ें नितिन मुकेश और मोहम्मद असीस की हैं। बोल हिंदीवर के संगीत है राजेश रोशन का। फरमाइश आप सभी की। भिलाई छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा की। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा और उनके तमाम साथियों की। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश आई है डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ईशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और उनके तमाम साथियों की। और ये पत्र इसी गीत के लिए हमें प्राप्त हुआ गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। भेजने वाले हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक और उनके तमाम साथी। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं खुद कर्ज फिल्म का गीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रमा, 9 तारीख को

0: जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अंतराल के बाद मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है सभी सुनने वालों का। और अब इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं समीर का लिखा गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, आवाजें अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की। फिल्म का नाम दिल। और इस गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में मिली मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा आदर्श नगर मलूट पंजाब से, ये व्हाट्सएप फरमाइश है। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की। कुरावली से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद खैफ अंसारी की।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90। अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फूल और कांटे फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश आप सभी की। नेपाल पहले सागर से ये पत्र में मिला तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन का। यहीं से शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, सक्सेना, रामदास, रमाकांत दुबे, रमेश कठौंदिया, प्रमोद सैनी, सुजीत भाई और उनके तमाम साथियों का ये पत्र है। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में मिली अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, जयपाल यादव। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, श्रीमती विमला अनेजा ने ये व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी है। और ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला ज़िला फिरोजपुर पंजाब से ये व्हाट्सएप फरमाइश है। स्वर्ण से हैं गिल, दलजीत से हैं, राजदीप से हैं, गुरलाल से हैं, अविराज से हैं और पोत्रे गुर नूर से हैं और शुभदीप से हैं की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फूल और कांटे फिल्म का गीत।

और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म का नाम कभी कभी, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत है खय्याम का, बोल है साहिर के, फरमाइश आप सभी की। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये वार्ड से फरमाइश है अब्दुल गफ्फार डाबर की। खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे की और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी की अवार्ड से फरमाइश में मिली। मेन बाजार कुंडल वाड़ी महाराष्ट्र से ये अवार्ड से फरमाइश है गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर और उनके तमाम साथियों की। और ये पत्र है इसी गीत के लिए कुंवर कॉलोनी बड़वाह से, भेजने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गीत।

0: मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुनहरी यादें आकाशवाणी के 90 बरस। इस बार के मेहमान हैं डॉक्टर संजय सिंह वर्मा, आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी। आपसे बातचीत कर रहे हैं जय शेखर और दीपक निषाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी की सुनहरी यादें। आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है अपनी स्टूडियो में एक चिरपरिचित नाम को, जिस नाम से आप रूबरू होते रहे हैं, जिस व्यक्ति की आवाज आपके कानों तक पहुंचती रही है, जिस व्यक्ति की पहचान आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ना जानते हों। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कार्यक्रम अधिकारी रहे डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जयशेखर जी, और तमाम श्रोताओं को आपके डॉक्टर संजय सिंह का प्यार भरा नमस्कार।
1: और श्रोताओं, हमारे साथ आज की इस परिचर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए हमारे साथ दीपक निषाद जी।
3: जी, सुनने वालों को मेरा भी बहुत प्यार भरा नमस्कार, और डॉक्टर साहब चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। और आकाशवाणी सागर से आपके सफर की शुरुआत हुई, उसके बाद आप आकाशवाणी दिल्ली भी गए और कई पटलों पे आपने काम किया। बहुत राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम आते हैं उसमें भी आपने अपना योगदान दिया। तो हम इस सफर की शुरुआत करना चाहेंगे, और आपके साथ ऐसा लग रहा है बातचीत करते हुए बैठ करके कि घर वापसी जैसा हो रहा है। जिस माइक से और जिस मंच से हम लोग बात किया करते थे, उस मंच पे आपकी दोबारा वापसी हुई है। बस भूमिकाएं बदल गई हैं इस बार। तो हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, चूंकि आकाशवाणी के 90 बरस के इस सफर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक सुनहरी यादें सबके मन में कहीं ना कहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में भी बहुत सारी यादें दर्ज होंगी। तो आप इस पूरे 90 वर्ष के सफर को, खासकर आपने जब अपने करियर की शुरुआत की तब से लेके अब तक की यात्रा को अगर आप समेटना चाहें, एक विहंगम दृष्टि देना चाहें, तो आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, आकाशवाणी के 90 वर्ष जबकि विधिवत प्रसारण की शुरुआत हुई थी, और इस गौरव यात्रा का साक्षी भी मैं रहा हूँ, और इसमें से कम 3 दशक कैसे रहे हैं
1: जी, बिल्कुल,
2: जिसमें मैंने आकाशवाणी के माध्यम से तमाम श्रोताओं की सेवा की है। तो सागर आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठकर, अब जिसको कहा जाए ना यादों का महासागर जो है
1: जी,
2: वो एक तरीके से उमड़ने लगा है। तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इतनी सारी यादें, इतने सारे श्रोताओं का प्यार, इतना अच्छा लगता है यहाँ आके।
3: इन यादों के महासागर में से एक एक मोती करके हम चुनना चाहेंगे। सबसे पहले आपके कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई, ज्वाइन आपने कहाँ किया, और उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा एक जो रुतबा था, जो रौब था, दर्शकों के बीच में जो उसकी पहुंच थी, प्यार था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
2: देखिए, 1996 में मैंने आकाशवाणी सागर ज्वाइन किया एज अ ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव
1: जी,
2: और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन से सिलेक्शन हुआ था मेरा, और उसके बाद फिर लगभग 20 वर्ष मैंने सागर आकाशवाणी में सेवाएं दी, और फिर जो शेष 10 साल हैं, जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हो गया प्रमोट होके, तो मैं आकाशवाणी दिल्ली चला गया। जहां तक सागर आकाशवाणी की बात है, तो उस समय एफएम की शुरुआत हुई थी यहां पे। ऐसा दौर था जब मीडियम वेव और जो शॉर्ट वेव होते हैं उससे हट रहा था धीरे धीरे, और अब एक प्रसारण में नई विधा आ गई थी, एफएम कई स्टेशन खोले गए
1: जी, बिल्कुल।
2: और उस समय एफएम का ट्रांसमिशन इतना साफ और स्पष्ट हुआ करता था कि लोगों को विश्वास नहीं आता था कि रेडियो है ये। जब मैं बहुत पहले अपने बचपन की बात करूं, तो जिस रेडियो से हम लोगों ने
1: शॉर्ट वेव मीडियम वेव पे
2: उससे बिल्कुल अलग विधा थी है। तो एफएम में जब काम करने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे नए नए शुरू हुए
1: जी।
2: खासतौर पे बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारा, फोन करेगी सुन,
1: हाँ।
2: इस प्रोग्राम से मैं शुरू से ही जुड़ा रहा, और लगातार इसमें मेरे ख्याल से 10-12 साल 13 साल
1: जी, प्रोग्राम
2: को किया इस प्रोग्राम को मैंने, और उससे जुड़ी हुई घटना बताता हूँ
1: जी।
2: एक बार, जैसे सब आप जानते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है, ठीक है। तो एक बार हम लोग किसी फील्ड वर्क के लिए गए थे, तो एक जगह मैंने देखा कि कुछ लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं और कुछ लोग जो है वो छत पे हैं। तो मैंने पूछा, भाई क्या हो रहा है ये? बोले साहब, वो एक फोन करे गीत सुने प्रोग्राम आता है सागर आकाशवाणी में, उसकी रिकॉर्डिंग करवानी है, और टावर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस जमाने में टावर जो थे
1: जी जी
2: वो
1: जी।
2: मतलब मोबाइल के सिग्नल्स कम हुआ करते
1: हैं।
2: तो मैंने कहा, भाई देखो, पेड़ से आप गिर जाओगे, और इस कार्यक्रम का प्रोड्यूसर नहीं हूँ,
1: हाँ।
2: तो मैं आप लोगों का लगवा दूंगा फोन, लेकिन इस तरीके से आप प्रयास ना करें। तो ये जुनून रहा है उस समय।
1: अच्छा, आपके साथ उस वक्त के साथी कौन थे जिनसे आपको सीखने भी बहुत कुछ मिला है, जिनकी यादें आपके जहन में आज भी अमिट हैं?
2: बहुत लोग ऐसे रहे हैं हमारे साथी, लेकिन खास जिनसे मैंने कुछ सीखा है, जैसे डॉक्टर ललित मोहन हैं
1: जी,
2: वो शुरू में आकाशवाणी से जुड़े हुए थे।
1: हाँ।
2: इसके बाद डॉक्टर किशोर सिन्हा हैं, वो भी पैक्स थे यहाँ पे
1: जी।
2: इलाशंकर गुहा साहब
1: जी,
2: इलाशंकर गुहा साहब से काफी लंबा उनके साथ मेरा सानिध्य रहा है, और खासतौर पर फीचर्स के बारे में जो ट्रेनिंग उनकी थी वो लाजवाब। फीचर्स के बारे में आज भी इलाशंकर गुहा साहब का जवाब नहीं, और शायद मैं समझता हूँ उन्हीं को ये श्रेय जाता है कि मैं 10 साल केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश जैसी जगह में, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, मंटो, सादत हसन मंटो जो है ना, ये सब जुड़े हुए रहे, और अनिल विश्वास बहुत बड़े संगीतकार हैं। यदि आप लोग अनुमति दे तो एक और बताऊंगा आपको कि जब मैंने दिल्ली आकाशवाणी ज्वाइन किया और केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश में पहुंच गया मैं, तो वहां पे मुझे एक पुराना टेप मिला। उस टेप में लिखा हुआ था कि आलेख जो है रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे ओजस्वी कवि रहे
1: जी, बिल्कुल।
2: तो मैंने वो टेप सुना, तो उसमें जो संगीतकार थे वो अनिल विश्वास थे, लेकिन टेप की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो फिर उस प्रोग्राम को हम लोगों ने रिप्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से ये समझिए कि यादों का महासागर वाली जो बात है ना, कि आकाशवाणी सागर से आकाशवाणी दिल्ली, तो वो एक सरिता सी बहती जा रही है।
1: जी, जी, जी।
2: मैं बताऊं, क्योंकि आकाशवाणी के बहुत अचीवमेंट्स रहे हैं जो पिछले 90 साल में, खासतौर पे एक उपलब्धि की चर्चा जरूर करूंगा कि जो हरित क्रांति की हम बात करते हैं
1: जी, बिल्कुल,
2: इसका सारथी हमारा आकाशवाणी ही रहा है, क्योंकि उस समय कोई मीडियम था नहीं।
1: हाँ।
2: तो लोगों ने आकाशवाणी को सुन के ही अपने क्रॉप पैटर्न्स बदले
1: जी,
2: किस तरीके से उनको आधुनिक खेती करनी है वो उन्होंने किया, किस तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग करना है, किस तरीके से उन्नत खेती करनी है
1: जी,
2: इसका सारथी आकाशवाणी ही बना है। तो कितनी बड़ी बात है, आज इतने करोड़ों अरबों लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है और किसानों ने सब आकाशवाणी सीखा।
1: अच्छा, सागर से शुरुआत आपकी रही एक प्रसारण निष्पादक की उसके रूप में, लेकिन इलाशंकर गुहा साहब के साथ जब आपने रूपक के ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमने देखा कि आपकी इस यात्रा में आप एक लेखक के रूप में बहुत अच्छे उभर कर आए। आपने जो आलेख लिखे हैं, कितने राष्ट्रीय फीचर बनाए गए हैं, बहुत सारे रहे हैं जो प्रासंगिक भी रहे, जिन्हें पुरस्कार भी दिया गया है, तो कौन कौन से फीचर बनाए आपने और सबसे दिल के करीब कौन सा रहा आपके?
2: देखिए, फीचर्स तो चूंकि हिंदी फीचर एकांश जो था, हिंदी रूपक एकांश जो है, वो फीचर्स के लिए जाना जाता है और नेशनल लेवल के फीचर्स वहाँ बनते हैं। तो अब लगातार 8-9 साल वहाँ काम किया और लगातार जो फीचर्स बनाए, तो उसमें मुझे लगता है, मुझे एक तो फीचर जो मैंने बनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको लोगों ने शायद उस समय सुना होगा, वो भारत और रूस के संबंधों के 70 साल।
1: क्या बात है,
2: बहुत। और उसमें रशिया से हम लोगों ने बाइट्स बुलवाई थी और उनका जो मिक्सिंग किया है इंडियन और रशियन म्यूजिक का, वो मुझे अपने आप में बहुत सेटिस्फाई करता है
1: जी।
2: इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा
1: जी,
2: वो था मन की बात के 100वें एपिसोड का।
1: अच्छा अच्छा।
2: जब 100वां एपिसोड हो गया मन की बात का, अभी तो 134 एपिसोड हो चुके हैं ना, तो अब 100वें एपिसोड पे ये एक चैलेंज ही था
1: जी,
2: कि आपको फीचर प्रोड्यूस करना है हमारे केंद्र को, केंद्रीय हिंदी रूपक के काम को। तो इसको हमने लिया, पूरे 100 एपिसोड का जो निचोड़ था वो उस प्रोग्राम में हम लेके आए, पूरे हिंदुस्तान से उसमें जो है वो बाइट्स बुलाई गई, और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसमें हमारा जो सहयोग था सागर आकाशवाणी ने किया, आपके जो कार्यक्रम प्रमुख हैं दीपक निषाद जी, इन्होंने सहयोग किया, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी उसके लेखक थे जो सागर के ही थे, और बड़ा सफल प्रोग्राम बना।
1: क्या बात।
2: तो आप यदि अनुमति दें तो एक और चीज में
3: जी जरूर बताइए।
2: एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना था और वो था शहीदी दिवस पे, गांधी जी के जिस दिन शहादत हुई है 30 जनवरी को उसका ब्रॉडकास्ट होना था, तो एक रूपक का प्रोडक्शन हम लोगों ने किया, हमने गांधी को देखा।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
2: एक आपको घटना बता रहा हूँ, वाकई ये घटना सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे पता लगा कि एक सज्जन है जिनकी उम्र 97 ईयर्स है।
1: अच्छा।
2: और उनका नाम है केडी मदान,
1: 97 वर्ष के,
2: आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो केडी मदान साहब उस समय जीवित थे, अब तो स्वर्गीय हो गए वो। तो मैंने कहा कि कॉन्टेक्ट किया जाए उनसे, फोन किया उनको,
1: उस रूपक के परिपेक्ष में
2: मैंने उनको फोन किया, तो वहां से उनके केयरटेकर ने कहा कि भाई उनकी एज बहुत हो गई है, अब तो किसी को इंटरव्यू देते नहीं है। मैंने कहा आप एक बार कहिए कि ऑल इंडिया रेडियो से फोन आया, मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट बाद फोन आ गया कि वो तैयार हैं, आप कल 11 बजे आ जाइए। और मुझे ये लग रहा था कि 97 साल की एज है और राष्ट्रीय रूपक में प्रसारण होगा, ऐसा ना हो कि आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो। जब मैं गया हूँ साहब, वो सफ़ेद कुर्ते पैजामे में बैठे हुए थे और आवाज़ में कहीं भी लर्जिश नहीं,
4: खनकदार आवाज़।
2: और उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि कैसे गांधी जी आए और कैसे उनको गोली लगी, कैसे वो गिरे, का सारा जीवंत वर्णन जो है उन्होंने किया। ये प्रोग्राम में भी है, हमने गांधी को देखा, कभी आप प्रसारित करेंगे तो हमारे साथ सुनेंगे।
4: बिल्कुल।
2: तो इस तरीके की अनेकों घटनाएं जो हैं
4: जी,
2: वो हुई हैं। मैं सागर आकाशवाणी पे फिर से वापस आ जाऊं, क्योंकि क्या है कि देखिए इस माइक से बहुत पुरानी दोस्ती रही है और
3: दोस्त पूरी दुनिया का आपने एक रूपक भी बनाया हुआ है रेडियो दिवस के ऊपर।
2: जी, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ,
4: शुरुआती दौर की
2: शुरुआत आकाशवाणी सागर में जो है, तो मैंने आपको फोन करेगी सुने के बारे में तो बताया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार एक प्रोग्राम हमने बनाया था, मैंने हरित क्रांति की बात की
4: जी।
2: हमारे यहाँ का कृषि जगत प्रोग्राम जो था, जो चौपाल के नाम से उस समय प्रसारित होता था, वो बहुत पॉपुलर था।
3: अभी किसान वाणी के नाम से जाता
2: है, किसान वाणी के नाम से स्पॉन्सर्ड हो गया, तो किसान वाणी के नाम से। लेकिन क्या हुआ कि उसमें एक फोन आया कि साहब हमने आपके यहाँ से प्रोग्राम सुन के पॉली हाउसेस लगाना शुरू कर दिया।
4: बहुत ही बढ़िया,
2: हमने कहा बहुत अच्छा है भाई, तो क्या करें। तो दिमाग में आया कि चलते हैं उस गांव को विजिट करते हैं। तो मनक्याई करके एक गांव है, तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ हमने देखा कि वाकई किसान जो हैं वो पॉली हाउसेस को लगा के, और उन्होंने बहुत अपना शिमला में टमाटर इसकी अद्भुत खेती वो कर रहे हैं। तो दिमाग में आया कि एक फीचर बनाया जाए, तो फिर एक फीचर बनाया, उसका नाम रखा लौटे बरेजे की ओर।
4: वाह, बहुत।
2: इसकी प्रेरणा हमारे तत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख थे ज्ञान बुंदेला
4: जी,
2: उन्होंने दी थी फीचर, फिर हम लोगों ने बनाया।
4: हाँ।
2: और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो फीचर जो है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के लिए सिलेक्ट हुआ और 2012 का वार्षिक पुरस्कार आकाशवाणी का उसको मिला।
4: बहुत ही बढ़िया।
2: आप चरणदास स्टोर के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो इस तरीके से हमीद तनवीर जी का लिखा हुआ नाटक है, और वो कैसे जुड़ा आकाशवाणी से और किस तरीके से क्या प्रभाव था उसका मैं थोड़ा सा बता दूं। क्या हुआ, एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे
4: जी।
2: उस प्रोग्राम का नाम था दोस्त सारी दुनिया का। जो रेडियो दिवस होता है विश्व रेडियो दिवस 12 फरवरी को, उस दिन उसका प्रसारण था। तो मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो ये बताए कि रेडियो सुन के उनका मन परिवर्तन हुआ। तो आकाशवाणी दिल्ली की बात थी, शाम को मुझे खबर मिली कि एक सज्जन आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, उनको भेजिए अंदर। जब आए तो बोले साहब मैं जेल से छूट के आया हूँ। तो मैंने कहा कैसे रेडियो में कैसे है? बोले आप ढूंढ रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले बहुत अपराधी किस्म का व्यक्ति रहा हूँ, मैंने कई अपराध किए हैं और अब मैं सजा काट चुका हूँ उसकी, लेकिन एकदम से फिर मेरे पास एक प्रेरणा आई और मैंने अपराध करना एकदम छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या प्रेरणा थी? तो बोले आपका विविध भारती का जो चैनल है उसमें हवा महल आता है, उसमें एक दिन एक नाटक आ रहा था चरणदास चोर, बोले उसको मैंने सुना और उसको सुनने के बाद मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई और फिर मैंने उस दिन से अपराध छोड़ दिए, मैंने खुद सरेंडर किया, अब मैंने सजा काट ली है। और आज जब मुझे पता लगा कि इस तरीके का प्रोग्राम बन रहा है तो मैं आ गया यहाँ पे। तो देखिए रेडियो किस तरीके से लोग के मन को परिवर्तन करता है, उसका एक उदाहरण जीता जागता मैंने आपको।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं एक परिचर्चा सुनहरी यादों के रूप में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह वर्मा, और स्टूडियो में इनसे बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद और मैं जयशेखर, और ये बातचीत जारी है। तो निषाद साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप?
3: डॉक्टर साहब, रेडियो को एक स्वस्थ मनोरंजन का केंद्र माना जाता है और लगातार अपनी परंपरा का निर्वहन कर रही है 90 वर्षों से। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये त्रिवेणी है, और लगातार इतने वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करना बिना किसी विचलन के, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने बहुत सारे किस्से सुनाए हैं जिसमें आकाशवाणी ने कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, उनके मन को परिवर्तित किया, मुख्य धारा से उनको जोड़ा। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो विधाएं रेडियो की हैं, रूपक, नाटक, कहानी, काव्य पाठ, झलकियाँ और भी जितने फ़ोन इन प्रोग्राम या भेंट वार्ताएँ, परिचर्चाएँ, ये जो हिंदी साहित्य की जो पूरी परंपरा थी उसको रेडियो और ख़ासकर आकाशवाणी ही समेट करके जनता के बीच में आसानी से पहुँचाने वाला एक माध्यम के रूप में काम करता रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ कोई श्रोता है या पाठक है वो प्रेमचंद को उस तरीके से पढ़ पाए, निराला को पढ़ पाए, लेकिन रेडियो ने बहुत सरल बना करके उसको जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया
2: आप
3: है।
2: दीपक जी, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी विधा है जिसको रेडियो ने टच न किया? और हम देखते हैं सुबह से तो हमारा जो चिंतन कार्यक्रम है वो दर्शन पे, गांधी चर्चा है, आप हमारे कैनवास को देखिए तो
3: भक्ति संगीत के कार्यक्रम को देख लीजिए, रामचरितमानस को देख लीजिए, रामचरितमानस
2: को इतना बड़ा स्पेक्ट्रम किसके पास है।
3: डॉक्टर साहब एक बात मुझे हमेशा आपकी याद आती है, चूंकि मैंने आपके साथ काम किया है, बहुत मार्गदर्शन में आपके काम किया है, तो एक किस्सा मुझे जो याद आता है, एक बार शायद शास्त्रीय संगीत का कोई चंग था और साप्ताहिक हमारा वो चंग था, किसी कार्यक्रम को वहां पे लगाना था तो शास्त्रीय संगीत के उस कार्यक्रम को हटा करके किसी और कार्यक्रम को उससे रिप्लेस करने की बात हुई, तो आपने बहुत विचार विमर्श के बाद ये बिंदु सामने रखा कि शास्त्रीय संगीत तो हमारे केंद्र से जाना ही चाहिए, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका प्रतिनिधित्व अगर हमारे केंद्र से नहीं होगा, आकाशवाणी से नहीं होगा, तो फिर कहाँ जाएगा ये। तो शास्त्रीय संगीत जैसी विधा को रेडियो ने कितना सहेज करके रखा है, और क्या सम्मान है एक प्रोड्यूसर के मन में उस कार्यक्रम को लेकर।
2: देखिए आप दिल्ली आकाशवाणी की जो गैलरी है जहाँ अभी बापू स्टूडियो बना हुआ है, वहाँ आप देखिए तो बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके और उस्ताद करीम साहब और लता मंगेशकर और जितने और भी हम जो कह रहे हैं क्लासिकल के जो निष्णांत गायक हैं उनकी सबकी फोटो लगी हुई है और सब लोगों ने वहाँ आके परफॉर्मेंस दिया। तो ये शास्त्रीय विधाएं हैं जिनको आकाशवाणी ने ही बचा के रखा है बहुत हद तक। एक चीज इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा, जैसे मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा रहा और उसका जो संस्कृत संस्करण है उसका मैं इंचार्ज भी रहा हूँ।
4: अच्छा अच्छा,
2: आपने देखा होगा मन की बात कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम है उसके बाद संस्कृत का जो संस्करण है वो तत्काल बाद प्रसारित होता है, तो उसका इंचार्ज रहने का भी सौभाग्य मुझे मिला। और मैं ये केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की जो शास्त्रीय विधाएं हैं, जैसे हमारी संस्कृत है
4: जी,
2: उसको बचाए रखने का, संस्कृत में समाचार आते हैं सुबह,
4: हाँ
2: बलदेवानंद सागर
4: जी
2: का नाम बहुत सुना,
4: बहुत जाना पहचाना नाम है,
2: इनके साथ मन की बात के कई एपिसोड जो है हमने किए हैं संस्कृत वाले।
3: भाषा को सीखने का, भाषा को रचने का, गढ़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम आकाशवाणी रही है, और खासकर जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज गोइंग है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप सोचिए कि कैसे हिंदी में समाचार जा रहा है, तो हिंदी के बाद अंग्रेजी में हूबहू वही समाचार जा रहा है, तो हिंदी से अंग्रेजी जो छात्र गांव के सीखना चाहते हैं वो हिंदी के ट्रांसलेशन को जब अंग्रेजी में सुनते हैं तो उससे वो अपनी अंग्रेजी को निखारते हैं।
2: दीपक जी एक बात बहुत इसमें खास है कि विश्वसनीयता जो हमारे प्रोग्राम्स की है, हम कह रहे हैं मैं केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश में रहा हूँ, और जब भी कोई चीज ब्रॉडकास्ट हम करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो उसकी विश्वसनीयता को पूरी तरीके से परखा जाता है। हमारे जो समाचार एकांश हैं वहाँ पे न्यूज रूम लगातार काम करते
4: जी।
2: हैं। आपको मालूम है किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जब हम राजकीय शोक की घोषणा करते हैं तो वो हम जब तक नहीं करते जब तक हमें कैबिनेट से उसका अप्रूवल नहीं मिलता है।
4: यही विश्वसनीयता है
2: जी, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि आज भी लोग रेडियो को ही विश्वसनीय मानते हैं, अब बहुत फॉर्मल चेंज हो गया है, रेडियो हर जगह उपस्थित है।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, आकाशवाणी ने कुछ समय पहले एक मुहिम चलाई थी संग्रहालय बनाने की, जो रेयर लोक संगीत हैं और जो महान महान व्यक्तियों के इंटरव्यू हैं, साक्षात्कार हैं, तो उसके बारे में बताइए दिल्ली में किस प्रकार सुरक्षित हैं ये, और किन किन को आपने सुना, किन किन को आपने समझा और जाना।
2: देखिए एक परियोजना थी वो संस्कार गीत के नाम से
4: जी,
2: संस्कार गीतों की इस परियोजना से मैं महानिदेशालय स्तर पर भी जुड़ा रहा,
4: हाँ हाँ।
2: और सागर आकाशवाणी में जब मैं था तो मैंने उसके लिए रिकॉर्डिंग भी की, तो उन्होंने बहुत बड़ी धरोहर बना के रखी है और एक हमारा बहुत बड़ा खजाना है। उनका कहना यह था कि आप गांव जाइए, वहां सीधे सीधे जो विशुद्ध लोकगीत हैं उनको आप वैसा के वैसे ही रिकॉर्ड करिए और वैसे के वैसे ही भेज दीजिए। ये बहुत बड़ी परियोजना थी, आज भी कोई रिसर्च करना चाहे, शोध करना चाहे,
3: तो यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार आपके होते हैं एक व्यक्ति के, समाज के भीतर अलग अलग समाजों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होते हैं, पूरे भारतवर्ष से उनको संकलित करने का कार्य किया गया, बिल्कुल एकदम कच्चे रूप में, रॉ फॉर्म में, जिस तरीके से वो किसी ग्रामीण परिवेश में मौजूद थे।
2: जी जी जी,
4: बहुत ही अद्भुत।
3: डॉक्टर साहब आपने संस्कार गीतों की बात की और ग्रामीण क्षेत्र में जनता के बीच में ही जाकर के रिकॉर्डिंग की बात हुई, तो इससे एक फॉर्मेट और रेडियो का सामने आता है आकाशवाणी का, ओबी फॉर्मेट, आउटडोर ब्रॉडकास्ट जिसे हम बोलते हैं, या वाह्य स्थल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। तो आपने लौटे बरेजी की ओर की बात तो की ही, उसके अलावा दिल्ली आकाशवाणी में भी आप रहे हैं और बहुत सारे वीवीआईपी रिकॉर्डिंग्स आपने की है लोगों के बीच में जाकर के, तो ओबी ब्रॉडकास्ट का जो आकाशवाणी में एक परंपरा रही है, और कोई अनुभव जो आप वीवीआईपी रिकॉर्डिंग के दरमियान आपको मिली हो।
2: निषाद जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्थल रिकॉर्डिंग जो है वो जीवंत प्रसारण की जान है। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हमें रियल सेंटीमेंट्स, रियल जिसको कहते हैं ना बिल्कुल विश्वसनीय जो चीज़ें हैं वो हम वहाँ से लेके आते हैं। दिल्ली आकाशवाणी स्तर पर मैंने महसूस किया इस बात को कि जो

0: और उसके जो मुख्य शेरपा थे अमिताभ कांत साहब
1: जी,
0: मुझे एक्चुअली एक फीचर बनाना था, तो मैंने कहा कि यदि इनकी बाइट मिल जाए तो क्या ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए हमारा समर्पण श्रोताओं का, हम तो एक सेतु के समान काम करते
1: जी, बिल्कुल।
0: और बस यही कि एक फोन किया और उसके बाद बस 15-20 मिनट ही लगे होंगे कि वहां से फोन आ गया कि इस समय आप आ जाइए। और ये मेरे बिल्कुल देखी हुई बात है कि उस समय अमिताभ कांत साहब बहुत बिजी थे और उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया। तो ये सम्मान है और लोग बहुत सम्मान करते हैं आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी डॉक्टर साहब एक राष्ट्रीय धरोहर है, विरासत है, और ये विश्वसनीयता ही है जो लोगों के मन में आज भी अंकित है, जो पूरी संस्था को वो सम्मान दिलवाती है।
0: योग्य हाथों में है आकाशवाणी की बागडोर और भविष्य बहुत उज्जवल है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इतने सघन कार्यक्रम बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अब जब फुर्सत के पल आपको मिले हैं सेवानिवृत्ति के बाद, तो फिर जीवन में क्या परिवर्तन आपने महसूस किया?
0: देखिए, एक खालीपन तो लगता ही है, एक रूटीन में व्यक्ति जुड़ जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति भी एक अनिवार्य अंग है
2: जीवन में। अभी भी रेडियो कितना है?
0: देखा जाए तो शायद जी तो रेडियो बहुत है, रेडियो शुरू में भी था, लेकिन जो रेडियो आकाशवाणी की नौकरी में आने से पहले था और अब जो रेडियो है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया। एक जमाने में ये हुआ करता था, जब हम छोटे थे तो अक्सर हमारे पिताजी को शिकायत रहती थी कि आप रेडियो बहुत खोल लेते हो
1: जी।
0: तो मुझे पता नहीं क्या कुछ शौक था कि मैं रेडियो को खोल के देखना चाहता था बचपन में कि इसके अंदर से कौन बोलता है। देखिए फिर आकाशवाणी में ही नौकरी करने का मौका मिला, तमाम श्रोताओं की सेवा करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ।
1: डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि एक अरसा, एक उम्र लग गई आपको ये समझने में कि ये गहराई कितनी ज्यादा है, तो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसे में हमें ये बताएं कि जब आप सागर से दिल्ली गए तो आपके मन में क्या था, क्या लेकर गए थे? सागर की यादें, आकाशवाणी के जो कार्यक्रमों को बनाने की रूपरेखा होती है, इसने कहाँ मदद की आपकी?
0: देखिए, ये एक क्षेत्रीय केंद्र है, बल्कि इसको लोकल रेडियो स्टेशन कहा जाता है, और यहाँ जो हमारा संपर्क हमारे श्रोताओं से था वो बहुत जीवंत था
1: जी।
0: हम कोई भी प्रोग्राम बनाते थे, हमें तत्काल उसकी प्रतिक्रिया मिल जाएगी। और जब हम दिल्ली गए तो हमने ये देखा कि दिल्ली आकाशवाणी या दिल्ली स्तर पर जो है, जो हमारा ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो किस तरीके से चरितार्थ होता है
1: जी।
0: वहाँ पे हमारी नीतियों से लेके और एक बहुत विशाल कैनवास हमारे सामने होता है, वहाँ क्षेत्रीयता नहीं होती
1: जी।
0: वहाँ जो आप ब्रॉडकास्ट करते हो उसका एक लेवल ही अलग होता है। तो जब मैं यहाँ से दिल्ली गया तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ थी, लेकिन कई अच्छे लोगों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो वो सब अनुभव थे, तो बहुत आसानी से दिल्ली में मैंने काम किया। अपनी पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बना पाऊं और श्रोताओं की जितनी सेवा इसके माध्यम से हो सकती हो।
2: डॉक्टर साहब, आपने रेडियो के दोनों दौर को देखा है, आज के दौर को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है और हमारे पहले की पीढ़ी को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है, तकनीकी के बदलते हुए दौर को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है, फॉर्मेट कैसे बदला है इसको भी बहुत नजदीक से देखा है, श्रोता वर्ग भी कैसे बदले हैं, कैसे आज की नई पीढ़ी भी रेडियो के साथ जुड़ी हुई है। तो यदि हम रेडियो की बात करें, रेडियो कल यानी आकाशवाणी कल, आकाशवाणी आज और आकाशवाणी कल यानी भविष्य की जो रूपरेखा है आकाशवाणी की, इस पूरे बदलाव को आप अगर समेटना चाहें, इस पूरे बदलाव को आप कैसे देखते हैं?
0: दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल। और आकाशवाणी का जो अतीत रहा है, शॉर्टवेव से शुरू हुआ, मीडियम वेव, बड़े बड़े ट्रांसमीटर हुआ करते थे, उसके बाद FM आया और फिर FM के बाद एनालॉग ट्रांसमिशन चला, उसके बाद अब ब्रॉडकास्ट हो गया है, ऐप बेस्ड ब्रॉडकास्ट हो गया है, और आकाशवाणी और रेडियो घर घर पहुंच गया है, OTT है, वाकई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो परिवर्तन है ये तकनीकी परिवर्तन है, और जो हमारा तकनीकी विंग है वो बहुत सक्षम है, और मैंने शॉर्टवेव के समय से देखा है उनका समर्पण और किस तरीके से तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और उन लोगों ने तकनीक को किस तरीके से अपने आप में अपनाया और किस तरीके से श्रोताओं की सेवा में उन तकनीक को पहुंचाया, उसमें हमारे तकनीकी विंग का बहुत ज़्यादा हाथ है और वो कंधे से कंधा मिला के प्रोग्राम वालों के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम तो प्रोग्राम बना देते हैं, अब वो श्रोताओं तक कैसे पहुँच रहा है ये जिम्मेदारी तो तकनीकी विंग की है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं आकाशवाणी सागर में था
1: जी,
0: तो उस समय हमारे स्टेशन इंजीनियर हुआ करते थे अजय कुमार श्रीवास्तव
1: जी,
0: वो बहुत कर्मठ व्यक्ति थे और उनसे मैंने बहुत सीखा। जब पहली बार कंप्यूटर आया था तो वो 2003 या 2004 की बात है, तो ऐसा लगता था कि ये जो है ये
1: क्या बला है,
0: ये क्या बला है, तो वो खुद आके बैठते थे, खुद आके उन्होंने डबिंग और एडिटिंग सिखाई, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य रहा, ताकि और अच्छे तरीके से फिर श्रोताओं की हमने सेवा की, ऐसे लोगों के साथ काम करने का सहयोग रहा और बहुत अच्छे तरीके से फिर हम श्रोताओं की सेवा भी कर पाए।
2: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने

0: पूरी संपूर्ण यात्रा को हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में समेटा है और बहुत सारगर्भित वार्ता ये रही। और शुरुआत में जैसा आपने कहा कि महासागर है और इसमें बहुत सारे मोती बिखरे हुए हैं, निश्चित रूप से ये महासागर बहुत अथाह है, अनंत है, और इस छोटे से कार्यक्रम में आधे घंटे की अवधि में इसको समेट पाना भी मुश्किल है। आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि बातचीत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, लेकिन हमारे कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है, हमें इसे समेटना होगा, यहाँ समापन करना होगा। लेकिन आपके माध्यम से रेडियो के एक जीवंत स्वरूप को हमारे श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करने का एक अवसर मिला, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर संजय सिंह वर्मा साहब, आप केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित सीट पे आपने काम किया है, जहाँ पे पंत जी ने काम किया है, जहाँ पे सादत हसन मंटो जी ने काम किया है, जहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने काम किया है, ऐसे पटल पे आपको काम करने का सौभाग्य मिला है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमसे अपनी यादें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: दीपक जी। मैं बहुत आभारी हूँ आपका और जयशेखर जी का और आकाशवाणी सागर का कि पुनः एक बार मुझे अवसर प्रदान किया गया कि मैं श्रोताओं से रूबरू हो सकूं और अपनी बात श्रोताओं के साथ साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनहरी यादें, आकाशवाणी के 90 बरस। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के मेहमान थे डॉक्टर संजय सिंह वर्मा, आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी। आपसे बातचीत कर रहे थे जयशेखर और दीपक निषाद।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 10 बजने को है। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
6: भारती है देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।
1: पतंगा पतंगा जल जल जल मर जाए, ये दीपक झूम झूम लहराए। पतंगा जल, जल

से खेला ये परवाना, मन की अगन को है नहीं जाना।

पतंगा जल जल जल मर जाए, ये दीपक झूम झूम लहरा।

दिल तो चाहता है छोड़ कर के दुनिया, बस जाए तेरी आंखों में। महकते दिल का अरमा यही है कि बस के रह जाए तेरी

रहेंगे साथ जिंदगी भर, इस दिल का यही वादा है। दे देंगे जान तुम पर ओ दिलबर, अब तो यही इरादा है।

0: घेर लिया है तेरी महकती जुल्फों ने, लिपटा हूं तो लिपटा ही रहूंगा, मिला है सुकून तेरे पलकों की छांव में, जो बैठा हूं तो बैठा ही रहूंगा।
1: हाँ,

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में

0: शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।